ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

नमः ओम मधुरी कोविधि चक्र मुख्य चैलेरपि निगमार्चित पाद पद्मकाग नमः ओम मधुर सफराक्षी सहचराग नमः ओम मधुमधन दक दूर चरणाग नमः ओम मधुकृते नमः ओम मधुर संभाष

उदानायामे वर्चोदा वर्चा से पवस्व वाचे मे ए वर्चोदा वर्चा से पवस्व क्रतु दक्षाभ्याम मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व श्रोत्रायमे वर्चोदा वर्चा से पवस्व चक्षुर्भ्याम मे वर्चोदस वर्चा से पवेथा आत्मने मे वर्चोदा वर्चा से पवस्वजा से मे वर्चोदा वर्चा से पवस्वायुषे मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदस वर्चा से पवेथा को ओसिकतमो ओसिकस्यासिको नाम।

भ्यो देवेभ्या उपरिषद्भ्यो दुवस्वद्भ्य स्वाहा ये देवा अग्निनेत्राः पुरः सदस्तेभ्य स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिण सदस्तेभ्य स्वाहा ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात् सदस्तेभ्य स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वामरुण्येत्रावोत्तर सदस्तेभ्य स्वाहा ये देवा सोमानेत्रा उपरिषदो दुवस्वन्तस्तेभ्य स्वाहा अग्ने सहस्वभृताना अभिमा आतीरपा अस्या दुष्टरस्तर्नरा आतीर्वर्चो ओधा यज्ञवाहसि देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनो ओर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् उपाग्यशोर्वीर्येन जुहोमि हतज्ञ रक्षस्वाहा रक्षासां त्वा वधाया वाधिष्म रक्षो मुष्यत्वा वधायामुमावधिष्म जुषानोध्वाज्यस्य वेतु स्वाहा अपो देवा मधुमतीरगृह्णन्नोर्जस्वती राजस्वश्चितानाः याभिर्मित्रावरुणा अभ्यषिञ्चन्याभिरिन्द्रमना यन्नत्यरातीः वृष्णा ऊर्मिरासिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृष्णा ऊर्मिरासिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहि वृषसेनोऽसिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृषसेनोऽसिराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि अर्थेतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा अर्थेतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त ओजस्वतीस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा ओजस्वतीस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त आपः परिवाहिनीस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा आपः परि वाहिनीस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता अपाम्पतीरसिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहा अपाम्पतीरसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहि अपाङ्गर्भोऽसिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहा अपाङ्गर्भोऽसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहि सूर्यावर्चसस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यावर्चसस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त सूर्यत्वचस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यत्वचस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त व्रजक्षितस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा अव्रजक्षितस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त वाशास्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा वाशास्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त मान्दास्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा मान्दास्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त शक्वारीस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा शक्वारीस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त जनभृतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा जनभृतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त विश्वभृतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा विश्वभृतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त शैष्ठास्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा शैष्ठास्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त आपस्वाराग्नेस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्त सम्मधुमतीर्मधुमतीभिः प्रच्यन्ताम् महि क्षत्रं क्षत्रिया यवन्वानाः अनाधृष्टासीदत सहोजा सा महि क्षत्रं क्षत्रिया चतधातीः सविता त्वा अप्रसवानाज्ञ सुवतामग्निर्ग्रहपातीनाज्ञ सोमो वनस्पतीनाम् बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः पाशूनाम् मित्रः सत्याय वरुणो धर्मापतीनाम्
इमं देवा असपत्नज्ञ सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय इममममुमुष्या पुत्रममुष्याः पुत्रमस्यै विशे एषवः कुरवो राजैषवः पञ्चाला राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाज्ञराजा सोमस्य त्विशीरस्यग्नये स्वाहा सोमाजस्वाहा सवित्रे स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा

युहुमस्तन्नो अस्तु वजग्स्यामपतायोरयीनां रुद्रजत्ते क्रविपरन्नाम तस्मै हुतमस्य मेष्टमासि स्वाहा। इन्द्रस्य वज्रोऽसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रोः प्रशिशा युनज्मि अव्याथायै त्वा स्वधायै त्वारिष्टः फल्गुनः।

0: అహం త్వాం హగ్య సశ్రుతిషద్వసూరంతరిక్షసద్ధోత ఆవేదిషతతి థిర్దురో నసత్ దృషద్వారసదృతసద్యో మసదబ్జాగోజారతజా అద్రిజారతం బృహత్ యాదస్యాయురస్యాయుర్మే దేహి యుంగాసివర్చో శివర్చో మే దేహి ఊర్గస్యూర్జం మయీ దేహి ఇంద్రస్య వాం బాహువీర్యకృత ఉపవాహరామి స్యోనాసి సుషదా శిక్షత్రస్య యోనిరసి స్యోనామాసీద సుషదామాసీదక్షత్రస్య యోనిమాసీద నిశాసాదధృతవ్రాతో వరుణః పస్త్యాస్వ సామ్రాజ్యాయ సుక్రతుః అభిభూరస్య యానామేతాస్తే పంచదిశః కల్పంతాం బ్రహ్మగ్రస్త్వం బ్రహ్మాసి సవితాసి సత్యప్రాసవో వరుణోసి సత్యౌజాః ఇంద్రోసి విషౌజా రుద్రోసి సుషేవాః ప్రియంకరశ్రేయస్కర భూయస్కర ఇంద్రస్య వజ్రోసి తేనామేరధ్యా అగ్నిః పృథుర్ధర్మ నస్పతిర్జుషానో అగ్నిః పృథుర్ధర్మ నస్పతిః ఆజ్యస్య హవిషో వేతు స్వాహా స్వాహా కృతా సూర్యస్య రశ్మిభిర్యతధ్వజ్ఞ సజాతానాం మధ్య మేష్ట్యాయ సవిత్రా ప్రా సవిత్రా సరస్వత్యా వాచ త్వష్ట్రా రూపైః పూష్ణా పశుభిరింద్రేణాస్మై
1: బృహస్పతినా బ్రహ్మణా వరుణేనౌజాసాగ్నినా తేజసా సోమేన రాజ్ఞా
0: విష్ణునా దేవతాజా దశమ్యేమం యజ్ఞం విష్ణుమాప్నవాని అశ్విభ్యాం పచ్యస్వ సరస్వత్యే పచ్యస్వేంద్రాజ సుత్రామ్నే పచ్యస్వ వాయోః పూతః పవిత్రేణ ప్రత్యం సోమో అతిశ్రుతః ఇంద్రస్య యుజ్య సఖా కువిదంగయ వామంతో యవంచిద్యథా దాంత్యానుపూర్వం వియూయ హిహేహైషాం గృణహి భోజానాని యే బర్హిషో నమా ఉక్తిన్న జగ్ముః ఉపయామగృహీతోస్యశ్విభ్యాం త్వా సరస్వతీ త్వేంద్రాయ త్వా సుత్రామ్నే యువజ్ఞే సురామామశ్వినా నమో చా ఆసురేశ చ విపిపానాశుభస్పతి ఇంద్రం కర్మ స్వావతం పుత్రమివ పితరా అశ్వినోభేంద్రావధు కావ్యైర్దగ్గ సనాభిః యత్సురామం వ్యపీబ శచీభిః సరస్వతీ త్వామఘవన్నభిష్ణకు ఇతి ఏకాదశోధ్యాయః.
2: ఓం నమః శివాయ. డియర్ లిజనర్స్ ఆఫ్ శైవం డాట్ ఆర్గ్, ది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: To usko phir shringar karti hai, mausundar shringar karti hai. రుద్రాక్షర్వసితేన దేవ వపుసు భస్మి లగా దేగి. ఆప్ లోగ్ నైసిల్ పౌడర్ లగా దేతే హో నా? భక్తి జననీ కో నైసిల్ పౌడర్ తో మిలేగా హి నీ హై? భక్తి జననీ కే పాస్ క్యా మిలేగా? చితాభస్మ మిలేగా భాయ్ హై? భసితం భస్మ చితాభస్మ లేపో సృగపి నిర్కరోటి పరికర రుద్రాక్షి లేవు. ఉస్ భక్త రూపి అర్భక్కు భక్తి రూపి జనని రుద్రాక్ష పైన దేతి హై. రుద్రాక్ష కా అర్థ హో గయా కి తుమ్ దృష్టి సే దేఖో, జిస్కో భీ దేఖో ఉసీ మే रुद्र बुद्धि करो, शिव बुद्धि करो, रुद्राक्ष का अर्थ है। भक्ति रूपी जननी भक्त रूपी बालक को रुद्र का नेत्र देती है, रुद्राक्ष लगा देती है, का मतलब हुआ कि तुम्हारे ये दृष्टि पैदा कर देती है कि तुम जो भी देखो वहीं परम शिव का अनुभव करो, दृष्टि में शिव भाव आ पाए, आ जाए। रुद्राक्षेर भसिते न देव बपुसो रक्षाम भवत भावना पर्यंके। कोई नजर ना लगाए इसलिए मां उसके गाल में काला लगा देती है, लेकिन भक्ति जननी सफेद लगा देती है। क्या ललाट में भस्म लगा दी, दुनिया का क्या नजर लगेगा है? बोलो, शिवजी का नजर गले में पड़ा हुआ होगा तो दुनिया का नजर क्या लगेगा? हम अपने बच्चों को रुद्राक्ष तो लगा नहीं सकते, कहीं रुद्राक्ष पहना देंगे तो इसके प्रभाव से कल जोगी बनकर ना भाग जाए, तो बच्चों को रुद्राक्ष नहीं पहनाना चाहिए है? हम डरते हैं बच्चों को रुद्राक्ष पहना देने में। भगवान शिव की दृष्टि जहां रहेगी कि संसारियों की दृष्टि पड़ेगी उसमें और लगेगा नजर उसको, और भस्मी लगा दो, हा क्या कहना। त्रिपुंड भस्मी लगा दो, भक्त को रुद्राक्ष और भस्मी लगाना चाहिए वो शिव भक्त को। शास्त्र में तमाम भरा पड़ा है रुद्राक्ष और भस्मी की महिमा। भगवत भावना पर्यंके, उस भक्ति रूपी जननी भक्त रूपी बच्चे के हृदय में भगवान के भावना रूपी पर्यंक झूले में सुलाकर और शिव के दिव्य चरित्र रूपी गान करती है, लोहरी गाती है। भगवत भावना पर्यंके निवेश्य, पर्यंक माने झूला, कौन से झूला? भगवत भावना रूपी झूले में भक्त रूपी अर्भक को भक्ति रूपी जननी दूध पिलाकर नला धुलाकर नया कपड़ा पहनाकर रुद्राक्ष और भस्मी लगाकर एकदम सजा के उसमें सुला देती है और दिव्य भगवत चरित्र का श्रवण कराती है, और बच्चा सोता नहीं जागता है। कहां? पर्यंक में। कौन से पर्यंक में? भगवत भावना रूपी पर्यंक में वो जागता है। भस्मी की महिमा तमाम शिव गीता है, अनेक स्तोत्रों में पुराणों में महिमा भरा पड़ा है भाई। नर्य भस्म समादाय विशुद्धम श्रोतियालयम अग्निरित्यादिवीर मंत्रेर अभिमंत्र्य यथा विधि उद्वलयति गात्राणि तेन चर्चति चार्चति मामपि तस्मात् परतरा भक्तिर मम रामन न विद्यते। भगवान शिव राम को समझा रहे हैं, हे राम, कोई व्यक्ति हाथ में भस्मी लेवे और उस भस्मी को वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करे। भस्म को अभिमंत्रित करने का मंत्र है अग्निरिति भस्म, जलमिति भस्म, थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, वायुरिति भस्म, थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुंहवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगुंसी भस्मानि। ये वैदिक मंत्र है, इस मंत्र से इस भस्मी को अभिमंत्रित करो। फिर उसके बाद त्रयायुखम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुखम यद्देवेको त्रायुखम तन्नो अस्तु त्रायुखम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। त्र्यायुखम इति ललाटे पश्य पश्य इति जानुनी। हाँ, वश में धारण करने की ये विधि है। हाँ? आपको वैदिक मंत्र नहीं आता हो चिंता नहीं करना, हाथ में भस्मी लो और पानी मिलाओ, पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करो और उसी पंचाक्षी मंत्री से तिलक धारण करो, भस्मी धारण करो। रुद्राक्ष और भस्मी सभी धारण कर सकते हैं, शास्त्र में ये बताया गया है। सभी को धारण करने का अधिकार है। सर्वदा शिरसा कंठे रुद्राक्षान धारयतु यः पंचाक्षरी जप परः समे भक्त समे प्रियः। राम गीता में नहीं, शिव गीता में भगवान शिव कहते हैं राम को। सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ललाट में, कंठ में, सिरसा सिर पे धारण करो और पंचाक्षर का जप करो। कौन कौन धारण करे? ब्राह्मण ही क्षत्रियर्वैश्य ही शूद्रैरपि च शंकर ही। ब्राह्मण भी भस्मी और रुद्राक्ष धारण करे, क्षत्रिय लोग भी भस्मी और रुद्राक्ष धारण करे, वैश्य भी, शूद्र भी और वर्ण संकर भी, अंत्यज भी, सभी को भस्म धारण करने का, रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। इतना जरूर है कि द्विजातीय जितने हैं वे लोग श्रोत्र भस्मी धारण करें, यानी उन मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके भस्मी धारण करें, और द्विज इतर जो हैं वह लोग सामान्य भस्मी को सीधे पंचाक्षरी मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण करें। श्रोत्रम भस्म तथा स्मार्तम द्विजानाम एव कीर्तनम अन्येषामपि सर्वेषाम् अपरम भस्म लौकिकम् धारणम् मंत्रतः प्रोक्तम् द्विजानाम् मुनिपुंगवैः केवलम् धारणम् विप्रा अन्येषामपि कीर्तितम्। सारी भस्म धारण और रुद्राक्ष धारण की महिमा है। भक्ति भी, शिव भक्ति भी, यदि भक्त रुद्राक्ष और भस्म धारण करते हुए शिव आराधना में लगता है तो भक्ति बड़ा प्रसन्न होती है। इस तरह शंकराचार्य जी ने अपने आप को एक बालक के रूप में प्रस्तुत करके शिव भक्ति को जननी के रूप में प्रस्तुत किया। और भक्ति जननी किस तरह भक्त बालक की रक्षा करती है, किस तरह श्रृंगार करती है, किस तरह स्नान कराती है, किस तरह पान कराती है, किस तरह भूख निवृत्ति कराती है, ये सब इन श्लोकों के द्वारा भाव व्यक्त किया। इसलिए आप पूरी तरह भगवान शिव के भक्त रूपी बालक बन जाओ। संभालने का काम भक्ति रूपी जननी का है, उसके जिम्मा लगा दो, सब कुछ वो संभाल लेगी, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे शिव भक्तों का एक आधा उदाहरण दे रहे हैं। इस श्लोक के द्वारा, 63वें श्लोक के द्वारा एक ऐसे भक्त का उदाहरण दिया है शंकराचार्य जी ने। दक्षिण भारत का भक्त है ये, जिसको दक्षिण कैलाश बोलते हैं, श्री कालाहस्तीश्वर महादेव, वहां का ये घटना है। आप लोग तो मूल कैलाश तो जाते हो ना, उत्तर कैलाश। श्री कालाहस्तीश्वर को दक्षिण कैलाश बोलते हैं। श्री कालाहस्तीश्वर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में है, इसलिए दक्षिण कैलाश आप लोगों को पता है। तिरुपति बालाजी जाते हो ना, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी से 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ पड़ता है। तिरुपति बालाजी से सीधा यदि मद्रास जाओ, चेन्नई जाओ, तो उसी रोड पर एक पहाड़ है, वहां वो मंदिर है। उस मंदिर का नाम है श्री कालाहस्तीश्वर महादेव, श्री कालाहस्तीश्वर। उसको दक्षिण कैलाश कहते हैं। वो नदी के किनारे में वो मंदिर है, पहाड़ के नीचे सुवर्णमुखी नदी है, नदी का नाम है सुवर्णमुखी। वहां एक शिव का परम भक्त हुआ है, उसके शिव भक्तों के इतिहास में उसका नाम बड़ा विलक्षण है, भील जाति का है, जंगल में रहने वाला भील जाति का। उस भक्त की चरित्र को शंकराचार्य जी ने यहां स्मरण किया है। कैसे भगवान की शिव के आराधना किया उसने। मार्गावर्तित पादुका पशुपते रंगस्य कुरुचायते गंडूसाम्बुनिसेचनम पुररिपोर दिव्याभिषेकायते किंचित भक्षित मांसशेष कवलम नव्योपहारायते भक्ति किम न करोत्यो वनचरो भक्तावतंसायते। अहो आश्चर्य की बात है, भक्ति क्या नहीं करती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कुछ भी कर सकती है। और भक्ति से प्रेरित होकर व्यक्ति यदि भगवान में लगता है तो सर्व दोष भी निर्दोष हो जाता है। भक्ति भाव की यह विशेषता है। कहते हैं कि मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कुर्चाए थे। वहां एक नियम उसके इतिहास में लिखा है, पहले मंदिर नहीं था, कहते सुवर्णमुखी नदी के किनारे शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, एक हाथी रोज आकर सुवर्ण नदी के से मुख से पानी भरता था और ले जाके शिवजी को चढ़ाता था, वही उसकी रुद्राभिषेक थी नित्य निरंतर। पूर्व जन्म का कोई शिव भक्त रहा होगा, किसी प्रारब्ध के चलते उसको हाथी का शरीर में फिर जन्म लेना पड़ा, किसी प्रतिबंधक के चलते। जैसे आप लोग शिव पुराण में बनाए भागवत में सुनते हो ना, गज की बात, हाथी की बात, गजेंद्र की बात। पूर्व जन्म में कोई विष्णु का परम भक्त था, लेकिन किसी श्रापवश उसको हाथी बनना पड़ा, और जब वो विपत्ति में पड़ा तो उस समय कोई उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं हुए, तो पूर्व जन्म का वो संस्कार जग गया और उसने उस सूंड से कमल तोड़कर भगवान विष्णु को कहा कि भगवान मैं इस संकट में पड़ा हुआ हूँ, आपकी आराधना और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे मन की भावना है कि यही आपके लिए पूजा होवे, इतना करना था कि भगवान विष्णु की बड़ी कृपा हुई और उनकी रक्षा हो गई। इसी तरह के कोई वो हाथी था भगवान शिव का परम भक्त, जो ये संस्कार था शिवार्चना, वो प्रतिदिन सुवर्णमुखी नदी में जाता था, पानी सूंड से खींचता था, पहले अपने शरीर में डालता था, स्नान कर लिया तब उसके बाद फिर सूंड में पानी भरता था और चल के जाकर शिवलिंग के ऊपर वो सूंड से पानी छोड़ता था, भावना करता था कि मैं शिव जी का रुद्राभिषेक कर रहा हूं। वाह, कहते हैं कि उसी समय एक करुड़ी मकड़ी, हिंदी में मकड़ी बोलते हैं, आप गुजराती लोग क्या बोलते हो, गर करोड़ियो बोलते हो, उर्ण नाभी संस्कृत में उर्ण नाभी बोलते हैं, है? मकड़ी बोलते हैं, वह भी पूर्व जन्म का कोई शिव भक्त था, उसको लगा कि ये भगवान शिव खुले में है, उनको दिन में धूप लगता है, कितना तड़पते होंगे भगवान शिव, वह सुबह जाता था और अपने शरीर में से वो रेशा को धागे को निकालकर बढ़िया जाला चंदुआ बना के ताकि भगवान को धूप न लगे गर्मी न लगे। और हाथी जाता था दूसरे दिन तो फिर वो सब पानी डाल देता था वो सब का मकड़ी, फिर वो चंदुआ बनाता था रोज, दोनों की कंपटीशन चलती थी। कहते वहीं एक आदिवासी रहता था, उसको कहां से शिव पूजा का धुन चढ़ गया, भक्ति चढ़ गई, उसने कहा कि ये जानवर तो भगवान शिव की रक्षा माने आराधना में लगे हैं, हाथी और मकड़ी ही, हाथी जानवर जीव है पशु है और मकड़ी तो कीड़ा है, वो भगवान की इस तरह सेवा कर रहे हो, मैं तो इंसान हूं, मुझे तो और करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पूजा करने के और साधन तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, क्योंकि आदिवासी भील था इसलिए उसके पास धनुष बाण था और तो कुछ था नहीं, तो रोज वो शिकार खेलता था, पशुओं को मारता था, तो पशुओं को मारने से पहले मारने के बाद स्वयं खाने से पहले उस पशु का नरम सा भाग मांस का टुकड़ा हाथ में लेता था, देख लो किस लिए लेता था, नव्योपहारायते, भगवान शिव को नैवेद्य भोग लगाना है ना, इसलिए अब रुद्राभिषेक कैसे करे, पूजा कैसे करे, गंडो सांबु निसेचनम पुररिपो, पूरा रिपो माने त्रिपुरासुर के मारने वाले भगवान शिव, पूरा रिपु त्रिपुरासुर के दुश्मन, पूरा रिपु दिव्याभिषेकायते, एक हाथ में तो धनुष्वाण है, एक हाथ में वो नैवेद्य है मांस है, फिर पानी किस में लेके जाएगा, कैसे ले जाएगा, उसने हाथी को पानी ले जाते हुए देखा था, वो सीख लिया, हाथी जब अपने मुख से जूठा पानी चढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं चढ़ा सकता हूं, नदी में गया और उसने मुख में पानी भर लिया, गंडू सांबू, गंडू माने मुख, अंबु माने जल, वो करता था मुख में पानी भर कर ले आता था और भगवान शिवलिंग पर श्रीकाला हस्तेश्वर शिवलिंग पर मुख का पानी चढ़ाता था, और हाथी के पूजा करने पर दिन दिन रोज रोज पानी डालने पर उस शिवलिंग में काई जम गया था,

मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कूर्चायते। शिवलिंग में जो जमी हुई काई थी वो पांव से जूते से पांव के जूतों से वो घसता था, क्योंकि एक हाथ में तो नैवेद्य रखा है, एक हाथ में धनुष पकड़ा है और मुख में पानी रखा है, फिर क्या करे। तो उसका पांव खाली था, पांव से रगड़ने लगा, जोर जोर से रगड़ रगड़ के उसमें जमे हुए काई को वो हटाता था। मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कुर्चायते। अब सब कुर्चन करने के बाद है क्या करता था, तो मुख का जो पानी है वो शिवलिंग के ऊपर गंडो सांबोनिसे चनम पुरा रिपोर दिव्याभिषेकायते। भगवान शिव के लिए वही दिव्य अभिषेक हो गया भाई। किंचित भक्षित मांस ले सकवलम, मीठा है कि नहीं, नरम है कि नहीं, पहले जानने के लिए वो पहले खा लेता था कच्चा ही। वो तो कच्चा ही खाता था, जंगली था वो, उसमें से जो स्वादिष्ट था नरम भाग था वो कहते ये ठीक है शिव जी के लिए भोग लगाना। सवरी ने भी बैर खाती रही ना, कड़वा है कि मीठा है कि कैसा है, खाने के बाद उसको अच्छा लगा तो ये ठीक है मेरे राम के लिए, ये बैर ठीक है। जो स्वादिष्ट था वो अलग रखती थी, जो कड़वा होता था फेंक देती थी। उसी तरह ये शिव भक्त कन्नप्पा, उसका नाम था कन्नप्पा, दक्षिण भारतीयों का नाम ऐसे तो होता है ना, कन्नप्पा शिव भक्तों का उसका नाम था। किंचित भक्षितम, थोड़ा सा खाकर स्वाद चखने के बाद बढ़िया जो मांस का खंड था, किंचित भक्षित मांस शेष कवलम, वो टुकड़े को नव्योपहारायते। भगवान शिव के सामने रख देता था, हे भगवान मैं मंत्र तो जाता नहीं जानता नहीं हूं, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पंच प्राणेभ्य स्वाहा मध्य पानीयम उत्तर पोषणम मुख प्रक्षालनम हस्त प्रक्षालनम जलम समर्पयामि। ये सब तो जानता नहीं था, ये खाओ महाराज ले जी यही खाओ, मैं ये खाता हूं आप भी यही खाओ, आप लोग भी तो यही करते हो ना, घर घर में शालिग्राम रखे हो, द्वारिकाधीश की मूर्त प्रतिमा रखे हो, लड्डू गोपाल की प्रतिमा कृष्ण राधा कृष्ण की प्रतिमा रखे हो, छोटा सा शिवलिंग नर्मदेश्वर रखा होगा है? अब एकादशी के दिन आप भात नहीं खाओगे दाल नहीं खाओगे, भगवान को क्या भोग लगाते हो। मैं भले एकादशी करूं, भगवान को तो दाल भात पका के खिलाना चाहिए, करते हो हैं? खिलाते हो दाल भात पकाकर? भगवान एकादशी नहीं करते हैं तो वो तो दाल भात खाने वाले हैं, इसलिए उनके लिए दाल भात पका देता हूं, मैं तो एकादशी करूंगा, ऐसा करते हो। तुम एकादशी कर रहे हो तो वही एकादशी के फलार भगवान को भोग लगाते हो, लगाते हो कि नहीं बोलो। और द्वादशी के दिन तुम दाल भात खाते हो तो वही दाल भात का ही भोग लगाते हो, तुम जो खाने के लिए पकाते हो वही भगवान को भोग लगाते हो कि भगवान से पूछकर अपने खाने के लिए पकाते हो, बोलो। वो आदिवासी भील जो खाता था वही ना भोग लगाएगा और क्या है, वही भोग लगाएगा। किंचित भक्षित मांस लेस कवलम नव्योपहारायते, भक्ति किम न करोत्यहो वनचरम। अहो आश्चर्य की बात है, वनचरम जंगल में रहने वाला वो कन्नप्पा नामक भील जाति का आदिवासी, उसके पास कपड़ा नहीं, उसके पास घर नहीं, जंगलों में रहता था, पेड़ के नीचे सोता था, लेकिन शिव पूजा इस तरह किया करता था वो। हाँ।

0: तो एक दिन वो इसी तरह कर रहा था पूजा, उसके आगे चरित्र आएगा, इसमें नहीं आएगा उसका, लेकिन शिव पुराण में है, शिव भक्तों के इतिहास में वो चर्चा है। एक दिन वो अपने पांव के जूते से, पांव से शिवलिंग में जो मैल जम गया था उसको घर्ष रहा था, तो अचानक वहां से रक्त निकला, ब्लड निकला। तो एक हाथ में तो मांस था, मुख में पानी, हाथ में धनुष्वाण, तो पांव से घस रहा था, रगड़ रहा था, तो अचानक रगत आ गया, ब्लड आ गया। अरे रे रे रे रे, मैं असावधानी से, मैंने असावधानी की और भगवान शिव के आंख में चोट आ गया। ये तो आंख के, भगवान शिव के आंख फूट गए मेरे असावधानी से, क्या करूं। तो आज जो वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग आई ट्रांसप्लांट करते हैं, वो उसको पहले ही पता था, उस कंडप्पा को। उसने कहा कि अब क्या करें, तो बोले अरे क्षमा करना भगवान, बोले अपनी आंख निकाली और लगा दी। हाँ, अपनी आंख निकाल के जोड़ दिया वहीं, तो रक्त आना बंद हो गया। थोड़ी की देर फिर अब तो ठीक हो गया करके वो रगड़ रहा था शिवलिंग, दूसरी जगह से फिर रगत ब्लड आ गया, खून आ गया। अरे राम राम, दूसरा आंख भी फूट गया, अब क्या करूं। बोले दूसरा आंख लगा देता हूं और क्या, मेरा भले आंख चले जाए, भगवान के नेत्र नहीं जाना चाहिए। उसने दूसरे आंख निकालने लगी लगा, बोले एक आंख तो मेरा पहले गया है, और दूसरा आंख निकालूंगा तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, लेकिन कहां पर लगाना है वो मुझे मालूम कैसे होगा। तो कहते हैं कि उसने अपने पांव के अंगूठा उस जगह पर पहले अड़ा दिया, यहां पर लगाना है। अड़ाकर उसने दूसरी आंख भी जब निकालने की कोशिश की, तो भगवान प्रकट हो गए, कहा कि हे भक्त, बस तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, है ये तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। भक्त भक्ति क्या नहीं करते हैं भाई, है भक्ति और भक्त मिलकर क्या नहीं करते है भाई। वही कहते मार्गावर्तित पादुका पशुपते रंगस्य कुर्चायते गंडू सामुनि से चनम पुरा रिपोर। यहां ये कहने का अभिप्राय यह है, भगवान की पूजा में भावना शुद्ध होना चाहिए, वस्तु जैसा भी हो चलेगा। हम लोगों की परिस्थिति क्या है, भगवान के पूजा की जो सामग्री में वस्तु की शुद्धता में हम ध्यान रखते हैं, और भावना जैसे भी हो, भावना इतनी दूषित है, सारे विकार हमारे भावना में भरी हुई है, खाली हम वस्तु की शुद्धता, भगवान को खाए बिना जूठा खाया हुआ भोग नहीं लगाना चाहिए, हम वस्तु पर शुद्धि पर ध्यान देते हैं, लेकिन भावना हमारा जो इतना बिगड़ा हुआ है। और इस भक्त का वस्तु की शुद्धि पर विचार नहीं, उसकी भावना शुद्ध है। ये श्लोकों का अभिप्राय यह है कि भगवान की भक्ति करने वालों को भावना शुद्ध होना चाहिए, वस्तु जैसा भी हो चलेगा, जो तुम्हारे पास है उसी वस्तु से तुम शुद्ध भावना से भगवान की आराधना करो। भक्ति किम न करो त्यो बनचरो भक्ता वतंसायते, भगवान तो भक्ति के बस में रहते हैं। और आगे क्या कहेंगे फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सत्करं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमा प्रेजेंटेड बाय स्वामी संतोषी माताजी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: भगवान आशुतोष की असीम अहेतु की कृपा के साथ भगवान शिव की महिमा के माध्यम से आप अपनी महिमा सुन रहे हैं। मुझे स्मरण हो रहा है, एक बार पूज्यपाद ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में किसी ने प्रश्न किया, वो ग्रंथ अवलोकन निरंतर उनका चलता रहता था। तो महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप क्या देख रहे हैं, बोले देख रहा हूं इस पुस्तक में मेरी क्या क्या तारीफ लिखी हुई है। तो ये जो महिमा आप सुन रहे हैं ये किसी दूसरे की महिमा नहीं है, ये तो आपकी अपनी महिमा है। आपकी महिमा इतनी अनंत असीम है कि जिसका कोई पारावार नहीं, आदि अंत मध्य नहीं है। परंतु ऐसे अपनी महिमामय गरिमामय स्वरूप को न जानने के कारण हमारी स्थिति ऐसी हो रही है कि एक भिखारी हाथ में भिक्षा पात्र लेकर सबके आगे पैसा मांग रहा है। उसे ये मालूम नहीं कि जिस स्थान पर बैठ करके वो भीख मांग रहा है उसी के नीचे अपार धन गड़ा हुआ है। उसे इस बात का मालूम नहीं है, मालूम न होने के कारण वो कंगाल बनकर सबके आगे भीख मांग रहा है। सो स्थिति हम सब लोगों की अपने स्वरूप को न जानने के कारण, अपनी वास्तविकता को न पहचानने के कारण अल्प सुख के लिए, अल्प शांति के लिए हम संसार में विषयों का आश्रय लेकर उनके लिए दीनहीन बने हुए गिड़गिड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, ये शिव कोई और नहीं है, ये तो आपका निज स्वरूप आत्मा है। और इस आत्मा के ही अनेक रूप ये धारण कर लेता है। अनंत नाम है इनके, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, और अनंत कार्यों के कारण सकल सृष्टि का जब खेल खेलते हैं तब इनके नाम अनेक हो जाते हैं, रूप अनेक हो जाते हैं। और जब सकल प्रपंच से निष्क्रिय होकर, निष्कलंक निर्द्वंद होकर जब स्वरूपस्थ होते हैं तो यह परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सदा शिव नित्य शाश्वत शुद्ध है। निर्गुण भी वही है और सर्गुण भी वही है। सगुण और सगुण रूप में जब लीला करते हैं तो अनंत नामों में कहीं कृष्ण बनकर, कहीं राधा बनकर, श्रीमद देवी भागवत और महाभागवत पर ऐसा प्रसंग आता है कि स्वयं भगवान सृष्टि के खेल खेलने के लिए एक बार भगवती आदि शक्ति पराम्बा शिवा के संग भगवान कैलाश पर विराजमान थे। मां भगवती के चरणों का दर्शन करते हुए भगवती की ओर भगवान ने, शिव ने दृष्टि लगाकर देखा। पार्वती का सौंदर्य, शिवा सौंदर्य कहते हैं, शिवा का अर्थात नित्या प्रकृति स्वरूपणी भगवती का क्यों जब रूप का दर्शन किया तो भगवान शिव इतने आनंदित हुए कि स्वयं शिव को इस प्रकृति के रूप में देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। और इस इच्छा के कारण भगवान शिव स्वयं पार्वती से कहते हैं, देवी मेरे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो उसे तुम पूरा करोगे। मेरे एक अंदर एक अभिलाषा जागृत हुई है, इच्छा जागृत हुई है, उसे तुम पूरा करोगे। भगवती शिवा कहती है, परमेश्वर अवश्यमेव, ऐसी कौन सी इच्छा जागृत हुई है कि जिसे आप मुझसे पूरा करने के लिए कह रहे हैं। कितना अच्छा होता कि भगवान शिव कहते हैं मैं स्वयं तुम्हारे रूप में प्रकट हो जाता, स्त्री बन जाता, और तुम स्वयं पुरुष के रूप में मेरे रूप में प्रकट होती। माँ पार्वती कहती हैं, प्रभु निश्चित ही मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण करूंगी। भगवान ने इसी इच्छा, इसी लीला को पूर्ण करने के लिए कल्पांत में जाकर लीला परिवर्तन किया। परिवर्तन में स्वयं भगवती शिवा काली कृष्ण के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव स्वयं राधा के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के सहस्त्रों नामों में एक नाम सखी भी है, सखी नाम शिव का है। शायद आप लोगों को ये नाम पहली बार ही सुनने को मिला हो। भगवान शिव को कहते हैं सखी, सखी नाम हनुमान जी का भी है और सखी नाम भगवान शिव का भी है। अर्थात भगवान स्वयं सखी बनकर राधा बनकर के प्रकट हुए, इसीलिए राधा गोरी है और भगवान श्री कृष्ण श्याम है, श्याम रंग की श्यामा काली है, गौर वर्ण के और कोई नहीं, ये भगवान शिव है। तो लीला क्रम में, सृष्टि के इस क्रम में न जाने कितनी बार पुरुष स्त्री के रूप में प्रणीत हो गए और स्त्रियां पुरुष के रूप में प्रणीत हो गए। सृष्टि के इस अनंता अनंत खेल में, लीला क्रम में रूपांतरित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वैसे ही सदा शिव भी जब सृष्टि की लीला खेल खेलते हैं तो अनंत रूपों में परिवर्तित होते ही रहते हैं, रूपांतरित। इसलिए किसी एक नाम और किसी एक रूप विशेष में भगवान शिव से किसी एक विशेष नाम और विशेष रूप को नहीं समझना चाहिए। शिव कहने पर हमारे सामने ध्यान क्या आता है? हमें शिव कहते ही स्मरण होता है कि जिनके सिर पर गंगा जी हैं और भाल पर चंद्रमा है, ललाट पर चंदन का आलेपन है, गले में विषधर धारण किए हुए हैं, कानों में सुंदर कुंडल धारण किए हुए गौर वर्ण के, शिव के रूप का स्मरण होने लगता है। पर शिव नाम किसी रूप विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, शिव नाम केवल रूप विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। शिव कहते हैं कल्याण को, शिव कहते हैं शुभ को, शिव कहते हैं मंगल को और शिव कहते हैं आत्मा को। तो इसलिए शिव कहते हैं उस ज्योतिर्मय को, ज्योति को, जिस ज्योति की कोई जात नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई शरीर नहीं है। अर्थात ज्योति की कोई जात नहीं होती, कोई आकार नहीं, लिंग नहीं होता और न ही उसके लिए कोई रूप है, वो तो एक दिव्य ज्योति है। तो सबके हृदयों में चेतन के रूप में, ज्ञान के रूप में जगमगाती हुई अखंड आत्म ज्योति के रूप में यही जो विद्यमान है वही शिव है। कण कण में सृष्टि के, जन जन के मन मन में जो व्याप्त परम चेतना है, ज्ञान स्वरूप, वही नित्य शाश्वत सनातन शिव है। इसीलिए कहा गया है शिव ब्रह्मा भी है, शिव विष्णु भी है और शिव महेश्वर भी है। शिव नाम महेश्वर का भी है, अर्थात सृष्टि के कार्य के खेल खेलने के लिए ये त्रिगुण शक्ति के रूप में, जो तीनों कार्य को करने के लिए त्रिगुणात्म रूप धारण किए हुए हैं, वही सनातन सदा शिव है। शिव महेश्वर को भी कहते हैं। महेश्वर माने सृष्टि का प्रलयंकर देव, वो महेश्वर है जिसे हम शंकर कहते हैं। अर्थात शिव विष्णु के रूप में भी हैं, जो निरतिशय अत्यंत परम व्याप्त है, जिसका जिसकी महिमा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, वही शिव है। और ऐसे शिव में जैसे पानी के भीतर जल का बुदबुदा दिखाई पड़ता है, वायु के संयोग से समुद्र में उठने वाली समुद्र की लहर दिखाई पड़ती है, जल में जल का बुदबुदा दिखाई पड़ता है, और वायु के निकल जाने पर वो बुदबुदा अदृश्य हो जाता है, वो लहर अदृश्य हो जाती है, तो इसका मतलब वो गई कहाँ? वो गई कहीं नहीं, वो पहले भी समुद्र में थी, समुद्र ही थी और समुद्र ही है। वो तो केवल बीच में प्रतीत हो रही थी वायु के संयोग से। इसी प्रकार जो जगत प्रकृति के संयोग से, चेतन के, ज्ञान के, शिव के और शक्ति के संयोग से प्रतीत होने वाला ये जगत और जगत के रूप में दिखने वाला हमारा ये शरीर, अर्थात प्रकृति से ये कोई अलग तो नहीं है। इसीलिए मेधा ऋषि ने, जब मेधा ऋषि से पूछा गया, महाराज वो प्रकृति क्या, वो शक्ति क्या है, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, याशा नित्यासा जगत मूर्तिया। अर्थात जो जगत मूर्ति के रूप में, जगत के रूप में जो दिखाई पड़ रही है, वही नित्या है, वही सनातनी है। अर्थात ये नित्य रूप में दिखाई पड़ने वाला जगत, ये शरीर भगवती शिवा के रूप में है। अर्थात शिव के ने जिस शक्ति को अपने आप से स्वीकार कर लिया, वही शक्ति सनातन है, शिवा है, प्रकृति है, और प्रकृति से ये प्रतीत होने वाला संपूर्ण जगत है। यदि प्रकृति के इस आवरण को हटा करके देखें, तो सर्वत्र केवल केवल एकमात्र जो परम शिव है, अर्थात जिसे परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, वही नित्य है, सनातन है, और वही हम सबों की आत्मा है। आत्मा तम गिरिजामति, वही आत्मा है। इसलिए आत्मा राम के रूप में, जिसका कोई लिंग नहीं, आत्मा के रूप में विद्यमान जो तत्व है, उसी को शिव कहा गया है, नारायण। इसलिए ऐसे भगवान शिव जब सगुण साकार रूप धारण करते हैं, तो वो महेश्वर कहलाते हैं, महेश कहलाते हैं, शंकर कहलाते हैं, और शंकर बन करके वो भक्तों के लिए अति दयालु, अति कृपालु देव हैं, बहुत कृपा करने वाले हैं, और स्वयं इतने कृपालु हैं कि भला उनकी उपासना करके, स्वयं शिव की, हरि भी जिनकी नित्य उपासना करते हैं, ब्रह्मा भी जिनकी नित्य वंदना करते हैं, भगवान श्री हरि ने तो भगवान शिव की ऐसी उपासना की कि आप महिमन स्तोत्र में रोज शायद पाठ करते होंगे।

0: भगवान श्री हरि भगवान शिव की आराधना करते हैं। कैसे आराधना करते हैं? बोले सहस्त्र नामार्चन करते हैं, एक नाम नहीं सहस्त्रों नाम, हजार नाम। और हजार नाम भगवान शिव के लेते हुए एक एक नाम के साथ भगवान के श्री चरणों में एक एक कमल अर्पित करते हैं, कमल चढ़ाते हैं। सहस्त्र नामार्चन कहते हैं कि सहस्त्र नाम से विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम है, गणेश सहस्त्र नाम है, ये सहस्त्र नाम से अर्चन करना चाहिए। बोले इसमें संकल्प होता है कि हम हजार बार सिर्फ शिव के नाम लेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं लेंगे, और हजार नाम से ही पुष्प चढ़ाएंगे। देखो नारायण भगवान को फूल चढ़ाना, तो ज्यादा चढ़ाएंगे न कम चढ़ाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि यदि ज्यादा हो गए तो उन फूलों का कोई उपयोग नहीं, कम हो गए तो भी वो नाम पूरे नहीं होंगे। इसलिए अर्चन में जितनी आवश्यकता हो उतनी समिधा जरूर लेनी चाहिए। बोले उससे अधिक फूल तोड़ के डालेंगे तो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि फूल का जीवन भी तभी सफल है जब वो भगवान के श्री चरणों में चढ़ जाए, भगवान पंचमस्तक पर चढ़ जाए, भगवान को समर्पित हो जाए, तो वो फूल का जीवन भी सार्थक है। यदि वो फूल नहीं चढ़ता है तो व्यर्थ उसके जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बहुत से लोगों को देखते हैं फूल सुंदर खिले हुए हैं, फूल को देखकर सबको अच्छा लगता है, तुरंत उसे तोड़ लेते हैं बिना किसी प्रयोजन के। पुष्प को तोड़ना भी अपराध है, उसे बिना उस जो जहाँ है प्रकृति में जो जहाँ खिला है वो उस वहीं पर उसकी सुंदरता को वहीं से निहारो। उसकी सुंदरता पर तो आपका देखने का तो आपको अधिकार है, पर उस फूल को उसके स्थान से हटा करके उस पेड़ से तोड़ करके उसके जीवन को नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कभी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए हम बैठे तो पूजा का विधान भी है कि जब पूजा करने बैठ गए तो बैठ गए, बीच बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए, बोलो भी नहीं उठो भी नहीं। यदि उठ जाओगे और बोल लोगे तो भी पूजा खंडित मानी जाती है। नारायण आसन पर बैठ पूजा से पहले सारा सामान पूजा का इकट्ठा कर लें, और जब पूजा करने के लिए बैठ जाएं तो फिर पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद ही उठना चाहिए, जब तक कोई ऐसा परम आवश्यक कारण न हो तब तक बीच में कभी ऐसा उठना नहीं चाहिए, ये पूजा का नियम है। भगवान श्री हरि भगवान शिव के सहस्त्र नामार्चन करने लगे, नामों से एक एक नाम लेकर कमल चढ़ाने लगे। देखा इसमें एक कमल, एक हजार में एक कमल कम हो गया, 999 कमल हैं, एक कमल कम है, उठ नहीं सकते और किसी को आवाज देके ये कह भी नहीं सकते कि एक कमल कम पड़ गया ले आओ। और हम लोग होते हैं तो बीच में जब तक 10 बार आवाज नहीं लगाएं, बहुत माताओं की आवाज आदत होती है, पूजा करने के लिए बैठी रहेंगी और बीच बीच में नौकर को बाई को सबको आवाज देती रहेंगी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना, वैसा कुछ नहीं करना। एक मैं मद्रास में किसी के घर गई, वो माँ घर की पूजा करती थी और पूजा पूजा करते करते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते, ए रामू देख दूध आ गया दूध इधर ले ले, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अरे दरवाजा खोल दे कपड़े की मशीन बंद कर दे, राम राम राम राम राम राम, वो बीच में इस तरह करते थे। ऐसी पूजा करने का कोई मतलब नहीं, तो कपड़ा तो दिमाग में कपड़े धोने को जा रहा है और दूध में जा रहा है और राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं। तो कहने का ये एक केवल अभ्यास जनक बात है, उसमें प्रेम और रस वाली कोई बात नहीं है। देखो नारायण पूजा का मतलब होता है भगवान की पूजा करना चाहिए, पूजा भक्ति है ऐसा मत किसका है? व्यास जी का है। पूजा अनुरागश्च, पूजा में अनुराग होना ये भगवान की भक्ति है, ये वेद व्यास का मत है। बोले पूजा और सेवा, भज सेव्यम, भगवान की सेवा करना ये भगवान की भक्ति है, ऐसा मत किसका है? बोले सांडिल्य ऋषि आदि का है। परंतु भगवान की पूजा सेवा है ये मत महर्षि व्यास का है। पर पूजा कैसे होनी चाहिए? बोले पूजा तो हृदय से होनी चाहिए, पूजा मानस होती है, पूजा हमेशा मन से की जाती है, अर्चना हमेशा बाहर से की जाती है। बाहर से जो भी आप कर रहे हैं, ये शिवार्चन कर रहे हैं, भगवती का अर्चन कर रहे हैं, गणेश का अर्चन कर रहे हैं, सब सामान सुविधा को लेकर के, पूजा तो मानस होती है नारायण। जब तक पूजा नहीं होगी तब तक अर्चना तुम कैसे करो? पूजा करनी चाहिए, बोले मन से करनी चाहिए। पहले पूजा करने के लिए देवो भूत्वा देवो यजेत, देवता का पूजन करने के लिए स्वयं अपने आप को देव तुल्य बनाए। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है अंग न्यास, करण न्यास, हृदय न्यास, ये सब न्यास कराते हैं कि ताकि आप संपूर्ण देवत्वमय बन जाए, आपका अंग अंग समस्त देवताओं के वास से ये आपका शरीर स्वयं देव तुल्य बन जाए, तभी तो देवता का पूजा करने का अधिकार आपको प्राप्त होगा। हम भूल गए ये सब परंपराएं। तो इस प्रकार भगवान का अर्चन कर रहे थे तो करते करते एक कमल बीच में कम पड़ गया, न तो किसी को आवाज दे सकते हैं, न उठकर जाकर ला सकते हैं। तब हरि ने क्या सोचा कि माँ मेरे कमलों, मेरे नेत्रों को हमेशा कहा करती थी, राम तुम्हारे नेत्र कमल जैसे, कमल नयन कमलों के समान तुम्हारे सुंदर नेत्र हैं। तो इसलिए इन्हें शायद ये नाम माने इसीलिए रखा हो। भगवान श्री हरि ने अपने आंख से निकालकर कमल के स्थान पर जैसे ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए देने के लिए तैयार हुए, तो भगवान सदाशिव साक्षात रूप से प्रकट हुए महेश्वर, और उन्होंने भगवान शिव की ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई, इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई कि भगवान शिव प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट करते हैं, जिसे भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र अपने हाथ में धारण किया और जिससे दुर्जनों का संहार किया, भक्तों की रक्षा की, अपने भक्तों के अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान शिव ने भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। अर्थात भगवान शिव की पूजा करके भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया, जिस चक्र के प्रभाव से वो सृष्टि में बड़े बड़े मधु और कैटव जैसे महान असुरों का वध करते हैं। जब जब भक्तों पर विपत्ति पड़ती है तब तब सुदर्शन चक्र से भगवान निग्रह करते हैं और भक्तों पर कृपा, दुष्टों का निग्रह करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं भगवान श्री हरि। तो भगवान शिव की आराधना का फल विष्णु को प्राप्त हुआ, भगवान शिव की आराधना का फल कल मैंने आपको कहा था रावण को प्राप्त हुआ। अर्थात जिसने, चाहे वो असुर हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो गंधर्व हो, जो कोई भी शिव की शरण में गए, ये भूत नायक ऐसे हैं कि जो भी भूतेश्वर भगवान की शरण में चले जाते हैं भगवान ये नहीं देखते हैं ये कौन है, भगवान ये देखते हैं ये मेरे पास आया है। जो उनकी शरण में आ गया, शिव शरण जिसने ग्रहण कर लिया, भगवान भूले से भी जिसने भगवान के नाम को अपनी जिह्वा में ले आया। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार कुछ डाकू थे, उनका कार्य था लूटपाट करना। दो दल थे, ये जंगल में रहते मार्ग को देखते थे। जब दूर से किसी को आते हुए पेड़ में चढ़कर देखते थे तो वो अपने साथियों को सावधान करने के लिए कहते थे, हर हर। और जब नजदीक पहुंच जाते थे, हर हर, इसका अर्थ था कि बस आ रहा है, हर लो। और जब बिल्कुल पास में आकर पकड़ लो इनको कहना होता था तो वो कहते थे, प्रहर प्रहर, इन पर प्रहार करो प्रहार करो, हर हर, प्रहर प्रहर, यही निरंतर वो उच्चारण किया करते थे। हर हर, प्रहर प्रहर, यही शब्द बोलते थे। तो जैसे ही उनका अंत समय आया, यमदूत उनके पास आए।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra, presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Tatva Jigyaso Sajjano Matao Behno. Hum log वैदिक शांति पाठ का विचार कर रहे हैं। पठन क्रम से चार वैदिक शांति पाठ का विचार किया। आज हम पांचवी कोटि में पढ़े जाने वाला जो मंत्र है उनका विचार करेंगे।

देखिए, ये हम बहुत बार इसको बोले होंगे, किंतु पूर्ण लाभ तो तभी मिलेगा जब हम अर्थपूर्वक अनुसंधान करेंगे। तो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है ये, और जहां तक मैं मानता हूं कि यहां जो भी बैठे उन सबको ये याद भी होगा। इस मंत्र का बड़ा ही विलक्षण अर्थ है, संपूर्ण वेदांत सिद्धांत को समेटे हुए है। समझने से पहले संदर्भ का विचार करें। ये जो मंत्र है वो शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद के मंगल पाठ के रूप में ये प्रसिद्ध है, और मंत्र का व्याख्यान होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण भाग की बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम अध्याय के अंदर ये प्रथम पाया जाता है। और इससे पहले ये बता दें आपको, क्योंकि ये संदर्भ आपको तभी समझ में आएगा जब ये प्रसंग बता दे, कि जो वेद है वेद के दो विभाग है, मंत्र और ब्राह्मण। धर्म ब्रह्म प्रतिपादक प्रमाण वाक्यम वेद। धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला जो प्रमाण वाक्य है उनको वेद कहते हैं, क्योंकि धर्म और ब्रह्म किसी को भी प्रत्यक्ष अनुमान वगैरह प्रमाण से उनका ज्ञान नहीं होता है। ये दोनों मात्र शास्त्रीय समधिगम्य है, शास्त्र योनित्वात् में व्यास जी ने स्पष्ट किया है कि ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र से ही संभव है, और धर्म का ज्ञान भी शास्त्र से ही संभव है। तो ऐसा जो धर्म और ब्रह्म इन दोनों का प्रतिपादन करने वाला जो प्रमाण वाक्य है उनको वेद कहते हैं, और वो जो वेद है उनका दो भाग है, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र को देखें, ऋक् यजु साम,
ये तीन मंत्र है, इसको मंत्र कहते हैं। जो नियत पादबद्ध है गायत्री आदि, उनको ऋक मंत्र कहते हैं। जो गीति प्रधान है ऐसे मंत्र को साम मंत्र कहते हैं। और इन दोनों से विलक्षण जो मंत्र है उनको यजु मंत्र कहते हैं। और अथर्व मंत्र का यज्ञ में विनियोग नहीं होने से उसको यहां पर नहीं गिना। ऋक यजु और साम ये त्रयी कहते हैं। और जो ब्राह्मण है उनका भी तीन विभाग है, विधि रूप, अर्थवाद रूप और इन दोनों से विलक्षण। अब विधि के भी चार भाग है, उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि, विनियोग विधि और प्रयोग विधि। और अर्थवाद भी है, दो प्रकार के हैं, गुणवाद और अनुवाद। और जो है उभय विलक्षण जो कहा वही है वेदांत वाक्यम। वेदांत वो दोनों से विलक्षण है, विधि और अर्थवाद से, यानी कि जो विधि भी नहीं है और अर्थवाद भी नहीं है ऐसे जो वाक्य है वो वेदांत वाक्य है, जिसमें ब्रह्म का प्रतिपादन है। तो इस प्रकार है मंत्र उपनिषद और ब्राह्मण उपनिषद, ये उपनिषद दो प्रकार की है। मंत्र भाग में पाई जाने वाली उपनिषद और वेद का जो द्वितीय भाग ब्राह्मण, उस ब्राह्मण भाग में पाई जाने वाली उपनिषद। और याद रहे आप लोगों को कि ब्राह्मण वो है जिसमें मंत्र का व्याख्यान है, मंत्र भाग का जिसमें व्याख्यान है उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण यानी कि आप जाति विशेष न समझ लीजिए, इसलिए कई लोग अपने यहां ऐसे सनातन धर्म में ऐसे संगठन है जो मंत्र भाग को ही प्रमाण मानते हैं और ब्राह्मण भाग को प्रमाण रूप से वो नहीं स्वीकारते हैं। आर्य समाजी वगैरह है वो मंत्र भाग को ही प्रमाण रूप से मानते हैं। मंत्र भाग में पाई जाने वाली उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, ऐसे क्रम से शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भाग में। वैसे तो अन्य भी मंत्र भाग में पाई जाने वाली उपनिषद है, मुंडक उपनिषद वगैरह, किंतु यहां जिसका जो प्रसंग है, जिसकी बात करनी है, ये जो वैदिक शांति पाठ, ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में ये ईशावास्य उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता यदि आप देखें तो ये ईशावास्य उपनिषद है, वो 40वां अध्याय है। इससे पहले 39 जो अध्याय है वो कर्मकांड के प्रतिपादक है, उनका कर्म में विनियोग है। और ये जो 40वां अध्याय है
जिसको हम ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद के रूप में जो प्रसिद्ध है, उसमें ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने सर्वप्रथम ईशावास्य उपनिषद का भाष्य करते समय पहले ही कहा कि ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रः कर्मसु अविनियुक्तः। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है। क्यों? तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। वो जो कर्म का शेष नहीं है, ऐसे आत्मा का याथात्म्य उनका पारमार्थिक स्वरूप है, उनको प्रकाशित करने वाले ये मंत्र है। और आत्मा कर्म का शेष नहीं है, ऐसे आत्मा का प्रकाशन ये मंत्र करते हैं। इसलिए उपनिषद ब्रह्म तत्व को प्रकाश करने वाली है। और भगवान भाष्यकार ने कहा कि ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है वो ब्रह्म तत्व का प्रकाश करते हैं। सपर्यगा चुक्रमकाय मवृणम अस्नावीरम शुद्ध मपाप विद्धम इत्यादि मंत्र से आत्मा के स्वरूप को बताया। इसलिए ईशावास्य उपनिषद ये मंत्र उपनिषद है, और ये उपनिषद के मंगल पाठ के रूप में ये मंत्र जिसका आज हम विचार करेंगे वो प्राप्त है। और ये जो ईशावास्य उपनिषद है, जैसे कि कहा यह मंत्रोपनिषद है, और ब्राह्मण जो होता है वो मंत्र का व्याख्यान होता है, तो ये जो मंत्रोपनिषद का व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का ही व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद है वो ब्राह्मण भाग की है, और ईशावास्य है वो मंत्र भाग की है। इसलिए यही मंत्र व्याख्यानात्मक होने से बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवें अध्याय में ये मंत्र पाया जाता है। और हमारे आचार्य बताते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो वाक्य है ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीद तद आत्मनम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, ये कहा। उस वाक्य में कहा कि ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीद, इदंकारास्पद जो ये नाम रूपात्मक संसार है वो उत्पत्ति से पहले ब्रह्म मात्र था। छांदोग्य उपनिषद में भी छठे अध्याय में इसको कहा सदैव सौम्य दमग्रे आसीद एकमेवा द्वितीयम्। और वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म से ये सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। इस बात को श्रुति वाक्य बताते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। उस ब्रह्म से ये संसार की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये जो इदंकारास्पद नाम रूपात्मक के जो संसार है वो उत्पत्ति से पहले वो ब्रह्म मात्र था।
और फिर कहा कि तद आत्मानम एव अवेद, उस आत्मा को जाने। किस रूप से जाने? अहम ब्रह्मास्मि इति, इस रूप से उनको अनुभव वाक्य है। और तस्मात् तत्सर्वम अभवत, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार का अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। ये जो वाक्य है, इस श्रुति वाक्य में जिसका उपक्रम किया हुआ है, इस उपक्रम में जो श्रुति का अर्थ है वो अर्थ, उनका जो आधार वो मंत्र उपनिषद है। यही मंत्र में उपसंहार है जिसका हम विचार करेंगे। क्यों ऐसा? तो कहा कि ब्रह्मात्मिकत्व निर्णयार्थम, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व है उस एकत्व का निर्णय करने के लिए ये मंत्र है। इसलिए इस मंत्र में संपूर्ण उपनिषद का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म और आत्मा की एकता, वह इस ये मंत्र का विषय है। इस मंत्र में ब्रह्म और आत्मा की एकता बताई गई है, इसलिए इसको मंगल पाठ के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनका अर्थ समझ में न भी आए किंतु बोलने मात्र से, इनका पाठ करने मात्र से क्या होगा? मंगल होगा, विघ्न की निवृत्ति होगी। हम लोग वेदांत का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुए तो जो विघ्न आते हैं वो विघ्न की निवृत्ति ये करते हैं। विघ्न किसको कहते हैं? पाप को विघ्न कहते हैं। पाप ही क्या है? विघ्न। जो हमको वेदांत का विचार करने में बाधा डालते हैं उनको विघ्न कहते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि रोज रोज क्यों करना है इसको? तो सज्जनों, रोज नए नए विघ्न आते हैं। विघ्न ये तो नहीं कि एक ही दिन आए, प्रतिदिन विघ्न आते। और वो विघ्न कोई अन्य के द्वारा किए हुए नहीं, खुद के ही है। खुद के द्वारा जो किए गए पाप कर्म है वो ही विघ्न के रूप में बाधा करते हैं। तो प्रश्न ये भी उठेगा कि क्या ये मंगल पाठ मात्र से वो पाप दूर हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे बिल्कुल। प्रारब्ध तीन प्रकार का होता है, मंद, मध्य और तीव्र। तीन प्रकार का प्रारब्ध होता है। तो जो मंद प्रारब्ध है पाप कर्म, वो ये मंगल पाठ से दूर हो जाता है। और जो मध्य कोटि का जो प्रारब्ध है वो शिथिल पड़ जाता है ये मंगल पाठ से। ये मंगल पाठ में ये सामर्थ्य है कि मंद प्रारब्ध को तो वो, मंद विघ्न को तो वो समाप्त कर देते हैं और मध्यम को कमजोर कर देते हैं। देखो, है ना लाभ। इसलिए कभी ये न समझे कि ये समय का वेस्ट है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो रोज रोज बोलते हैं, क्या रखा इसमें? घर में भी यदि सुबह में समय मिले तो ये दशो दश का पाठ अवश्य रोज करना चाहिए। तो देखिए, इसलिए ये जो मंगल पाठ है
उनसे विघ्न की निवृत्ति होती है पठन मात्र से, और अर्थपूर्वक अनुसंधान करने से अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव हो जाता है। तो देखिए इसमें प्रवेश करते हैं, उच्चारण करवा दिया। तो पहले कहा ओम पूर्णमदः, एक कहा पूर्णमदः, इसको पहला देखें। इसमें दो पद है, एक पूर्णम और दूसरा है अदः, उसको अलग करेंगे तो अदस हो जाएगा, अदस। पूर्णम और अदस ये दो पद है। जो परोक्ष है उनके लिए अदह शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो हमको आंख से नहीं दिखता है, जो परोक्ष है उनके लिए अदस शब्द का प्रयोग है। तो अदा

0: अदह पूर्णम। इसमें कहा गया कि अदह यानी कि जो परोक्ष है, जो परोक्ष ब्रह्म है वो पूर्णम, वो पूर्ण है। तो आपको यह बता दे कि ब्रह्म के दो स्वरूप का वर्णन उपनिषद में है, एक उपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक। निरुपाधिक ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म ऐसा भी कहे, सोपाधिक। सोपाधिक ब्रह्म वो है जिन्होंने उपाधि को धारण किया है, उपाधि से संयुक्त जो ब्रह्म है उसको कहते हैं सोपाधिक। और निर्गत उपाधि, उपाधि जिसमें नहीं है उस ब्रह्म को कहेंगे निरुपाधिक। और प्रकारांतर से आपको समझ में आए इसलिए और भी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। सगुण साकार परमात्मा के हजारों रूप है और हजारों नाम है, और निर्गुण और निराकार जो है वो परमात्मा एक ही है। निर्गुण और निराकार जो परमात्मा है उन्हीं की सगुण और साकार के रूप में हजार हजार नाम है और हजार हजार रूप है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत परमात्मा है, उनको भिन्न भिन्न रूप से उपाधि के कारण बहुत रूप से कहते हैं। बिंब स्थानीय सूर्य एक ही है किंतु एक हजार पानी के भरे हुए घड़े पड़े हैं, उन सबके अंदर सूर्य का प्रतिबिंब सबके अंदर अलग अलग दिखेगा। तो हजार सूर्य आपको दिखेंगे, जितनी उपाधियां होगी उतने सूर्य दिखेंगे। ऐसे ही जैसे बिंब स्थानीय सूर्य एक है किंतु उपाधि के कारण वो अनंत दिखते हैं, वैसे निरुपाधिक जो ब्रह्म है वो एक है किंतु ये सब जो उपाधियां है उस उपाधियों के कारण वो अनंत दिखते हैं। हम अभी जो अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहे हैं उपाधि के कारण, उपाधि के कारण हम अपने को क्या मानते हैं, जीव मानते हैं। किंतु ये जो उपाधि का परित्याग हो जाए तो जहां पर हम हैं वहीं पर हमको अपने पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होगा, और वो अहम ब्रह्मास्मि रूप से होगा।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhanda Nandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: गुण प्रकृति के हैं और प्रकृति से ये सांख्य दर्शन को अगर हम देखेंगे तो प्रकृति और

0: पुरुष का विवेक। सांख्य वाले जिसको प्रकृति और पुरुष कहते हैं, वेदांत उसको ब्रह्म और माया कहता है। पुरुष की जगह पर माया का शब्द है और प्रकृति की जगह पर, पुरुष की जगह ब्रह्म है और प्रकृति की जगह हम उसको माया कह लेते हैं। ये ब्रह्म की माया, ब्रह्म की शक्ति। और पुराणों में चले आएंगे तो वो भगवान और भगवान की लीला ऐसे बदल जाएगा। ये जिस व्यक्ति की जैसी मानसिक स्थिति है, जितनी बुद्धि और जितने त्याग और जितने विराग की बात जिसमें है, जितना सत्य के कोई निकट जाना चाहता है, उनके लिए अलग अलग ग्रंथ हैं। कई लोग तो शरीर से ही ऊपर नहीं उठ सकते, सूक्ष्म की तो बात ही क्या है। और सूक्ष्म में फंसे हुए सूक्ष्म को छोड़ के और ऊपर चले जाना और परेशानी की बात है, मुश्किल हो जाता। सुनने में जब आप गुणों की बात सुनेंगे, श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय सुने या उपनिषदों के भी बीच में, हर उपनिषद में गुणों की भी बात आई, लेकिन आई एक ही शब्द में है, वहां एक ही शब्द कह दिया तो पूरे आ जाएंगे। तो ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनका प्रतिपादन हमारे ऋषियों ने आज से वर्षों पूर्व किया, पाश्चात्य सभ्यता के लोग या आधुनिक जिसको आप लोग कहते हैं प्रगति वाले, इन्होंने मुश्किल से अभी 30-40 वर्ष हुए कि ये इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इन लोगों ने नाम अपने उसके रखे। देखो हमारे यहां वैशेषिक शास्त्र में कर्णाद ऋषि परमाणुओं की बात करते हैं कि परमाणुओं से फिर अणु, अणु से महाअणु, द्विअणु, त्रिवणु, त्रिश्रेणु, फिर पृथ्वी, फिर ऐसे बना सारा संसार बन। साइंटिस्ट या आज के जो भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो छोटे से छोटा जो कण है जिसको हमने अणु कहा, वो उसको एटम कहते हैं। किसी भी चीज का छोटे से छोटा टुकड़ा, जो सबसे छोटा टुकड़ा जो इन आंखों से नजर नहीं आएगा, वो एटम। और वो कहते हैं कि ये सारी दुनिया, सारा संसार एटमों से बना हुआ है। ये बात मुश्किल से आज से 40-45 वर्ष की होगी पहले की, या शायद इससे भी कम हो, क्योंकि ये हमारे देखते देखते ये बात आई कि अब एटम को भी उन्होंने तोड़ के देखा, उसके भी टुकड़े कर दिए, तो ये देखा कि एटम में तीन शक्तियां काम कर रही। उनके नाम उन्होंने रखे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इनकी व्याख्या आप देखो तो आप बिल्कुल रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तक आ जाओगे। हमने उसको अणु कहा, हमारे ऋषियों ने, बिना किसी यंत्रों के। आप अपने ऋषियों के चिंतन का और उनकी महानता का कभी ध्यान करो कि किस सभ्यता से किन लोग हमारे पूर्वज थे, कैसे और कितने वर्ष पहले वो ये बात कह गए कि प्रकृति है, प्रकृति तीन गुणों की है। गुण आपको दिखलाई नहीं देंगे, लेकिन तीनों गुणों की साम्यावस्था अणु कहलाती है। उनमें जब उतार चढ़ाव होता है, कभी रजोगुण तमोगुण, तो हलचल होती है, फिर बनना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जिसको आप कहते हैं, या वो लोग जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, हमारे यहां उसको तमोगुण कहा गया। जिसको वो न्यूट्रॉन कहते हैं, हमारे यहां उसको सत्वगुण कहा गया, न्यूट्रल, ना इधर ना उधर। और जिसको उन्होंने प्रोटॉन कहा, हमारे यहां उसको रजोगुण कहा गया। जिनको हमने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहा, उसी को पौराणिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया। उसी बात को समझाने के लिए शाक्तों की शब्दावली में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, वो कहेंगे यही चला रही हैं सारा संसार। पुराण वाले कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हैं, एक बना रहा है, एक संभाल रहा है, एक ये कर रहा है। प्रकृति वाले कहेंगे कि ये इस तरह से है, और एटम वाले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन करके वो अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह पर भारत के चिंतक या भारत के मनीषी, कोई एक दो साल पहले की बात नहीं है, अगर आप इनका ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो ये 5000 साल पहले की बात है जब ये कर्णाद ऋषि हुए। आज से 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले तो गीता लिखी गई थी, ये उससे भी पहले के। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बात फिर वही आ गई कि ये तीनों गुण है, ठीक, इसमें रजोगुण, यहां उन्होंने ये बात कही है कि रजोगुण समुद्भवा, इसलिए उसको समझने के लिए ये बात कर रहे हैं कि ताकि हम किस तरह से इसे पहचान कर साधना में आगे बढ़ सके, नहीं तो साधक साधना में आगे नहीं बढ़ेगा। साधक अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा रहेगा कि पहले वासनाएं पूरी हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र वो कहते हैं पहले शरीर की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ोगे। जब शरीर की मांग पूरी हो जाएगी फिर मन की मांग आ जाएगी, जब फिर मन की मांग भी अगर रह गई तो तब भी आगे नहीं बढ़ोगे। फिर मन की मांग पूरी करो, मन भी संतुष्ट हो, शरीर भी संतुष्ट हो, फिर बुद्धि की मांग पूरी करोगे, और क्योंकि बुद्धि को भी खुराक चाहिए, और जब बुद्धि की भी मांग पूरी हो जाए फिर अध्यात्म में जाओगे। ऐसा बहुत से शास्त्र समझाते हैं और आज के लोग इसको मानते हैं। आज सबसे ज्यादा भीड़ ही वहां पर है जो शरीर की मांग पूरी करने में लगे हुए। लोग कहते भी यही हैं, कहते हैं हमारे गुरुआ जी के यहां चले जाओ 5 रुपए में 15 पूरियां मिलती हैं और साथ में चने और ये और पूरे खा के आ जाओ। यहां भी बड़े बड़े सत्संग आप देखोगे कि वहां कम से कम 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, साथ में पूरियां बट रही हैं, वो भी हो रहा है, गुरु जी की ओर से लंगर भी लगा हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी संप्रदाय आप देखो या अब भी जितने बहुत बड़े देखो, साथ में कोका कोला फ्री में पीने को मिल रहा है, चाय के स्टॉल लगे, वहां भीड़ भी बहुत, और वहां सिद्धांत भी है कि जब तक शरीर में अगर भूख है तो कैसे सुनोगे वेदांत। हमारे शास्त्रों का कहना है जिसे वेदांत की चिंता है उसे भूख शरीर का कोई परवाह ही नहीं, शरीर रहता है, रहे नहीं रहता ना रहे, क्योंकि इसने रहना नहीं, इसकी मांग पूरी कर लो तब भी नहीं रहना, और इसकी मांग को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दो इसने तब भी नहीं रहना। और अगर सत्य के लिए मांग को निग्लेक्ट करते हो तो आपका जीवन धन्य, आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। इसकी मांग पूरी करने में लगे रहो, जन्म जन्मांतर तक लगे रहो, कहीं नहीं पहुंचो, और फिर जितना मर्जी कर लो इसने रहना नहीं है, बात सीधी। तो ये सिद्धांत बतलाना कि पहले शरीर की मांग हो, सुनने में अच्छा लगता है कि वाकई ठीक है। मैं कहता हूं आप खाना खा के अच्छी तरह से वो करके फिर करके फिर आप वेदांत सुनने आओ, समझ ही कुछ नहीं आना, क्योंकि आदमी की जितनी स्थूलता में हम चलते चले जाएंगे उतना सूक्ष्मता की बातें कहां से समझ में आएगी। कोई उसमें सिद्धांत नहीं है कि हम सत्य तक पहुंच सकें। तो ये तीनों के तीनों गुण जो हैं, इसमें देखो तमोगुण या जिसको इलेक्ट्रॉन कहा उन्होंने, वो स्थिरता का प्रतीक है, स्थिरता, रोके रखना चीज को। अगर रोके रखने की, देखो ये जो पृथ्वी है ये तमोगुण का घनीभूत उदाहरण, इसने सब कुछ रोक रखा है। पृथ्वी में एक अपना आकर्षण है जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल। आप कोई भी चीज ऊपर को फेंकेंगे वो नीचे आएगी, पृथ्वी उसको खींच लेती है। हम भी चलते चलते जो गिर जाते हैं कभी, वो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल है। ये तो ठीक है कि बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ने में हमारा भी हाथ है, लेकिन इतना ज्यादा आपका हाथ नहीं। आप कितना भी बच के चला हो, दुनिया में अभी तक कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो गिरा ना हो कभी। बचपन में तो बहुत बार ही गिरे होंगे और फिर बुढ़ापे में शुरू हो जाता है, और बहुत बार को ऐसा लगता है कि सुबह पूछो कि वो कहां है बाबूजी, वो कहते हैं जी बस सुबह बाथरूम गए थे, फिसल गए, फिर बस उसके बाद आए ही नहीं। तो पृथ्वी का ये जो गुण है ये आपके बस की नहीं है, आप गिरोगे ही। यहां रजोगुण की बात वो भगवान ये कह रहे हैं कि गिरोगे ही। अब कोई आदमी कहे कि मैं गिरूं ना कभी भी, गिरने का मुझे कारण बतला दो, तो गिरने का नहीं गिरोगे वो तब जब ये बात समझ जाओगे कि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण है और ठीक ढंग से चलना ये मेरा कर्तव्य है। मैं चलूं भी ऐसे ही कदम इधर उधर रख के, और फिर मैं कहूं कि जी मैं तो बस मर्जी नहीं थी कोई भी मेरी गिरने की, लेकिन फिर भी गिर गया, उठा भी मैं बड़ी सावधानी से। लोग कहते पता ही नहीं लगा जी क्या हुआ कि मैं धड़ाम से वहां जा गिरा। वो पता नहीं लगा का तो ये ध्यान रखो कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है, जरा सा आपकी नजर चूकी तो आप गए, क्योंकि पृथ्वी तो हर समय उसमें है, जागरूक है। गुण हर समय अपने काम के लिए तैयार, गुण में कभी ऐसा ये असावधानी नहीं हो सकती कि आप सोचो कि ये ना करें। विषयों में ये रहती है, आकर्षण जो भी है, काम का जो आकर्षण है वो विषयों में एक रहेगा। वैराग्य की कमी आप में है, पैर इधर उधर फसलने का मतलब है वैराग्य की कमी, धड़ाम से गिरेगा। उनकी सत्यता को मान लिया हमने कि ये बड़े आकर्षक हैं, ये बड़े वो। तो ये तमोगुण जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, उसका काम है स्थिरता। देखो पृथ्वी में अगर ये, तो साइंस वाले भी कहते हैं पृथ्वी में अगर ये वो ना हो, तमोगुण स्थिरता ना हो, इसकी ये कशिश ना हो, तो हम यहां बैठे हुए नहीं होंगे, हम उड़ रहे होंगे। वाह, ये तो पृथ्वी ने ही थाम रखा है, क्योंकि पृथ्वी की एक दूरी से आप ऊपर निकल जाओ कोई 200 मील ऊपर, तो 200 मील ऊपर के जाने के बाद फिर पृथ्वी की कशिश नहीं रहती, फिर वहां की कशिश है। जो चंद्रमा पे गए उन लोगों ने अपने आके अनुभव सब सब बतलाए कि वहां जाके फिर आदमी उड़ता है, फिर नीचे बैठना ही मुश्किल हो जाता है, ये वेट नहीं रहता। तो ये सारा कुछ ही वहां जाके बदल गया, क्योंकि वो तमोगुण वाले स्टेज में से आप निकल गए। तो तमोगुण जो भी है वो स्थिरता का प्रतीक है, रजोगुण जो है वो गति का प्रतीक है, मूवमेंट। क्योंकि स्थिरता ना हो तो मूवमेंट भी नहीं हो सकती, और मूवमेंट ना हो तो स्थिरता का भी कोई अर्थ नहीं। स्थिर तो तब ही किसी चीज को कहेंगे ना कि कोई ना कोई चीज चल रही है, अगर चल ही कुछ नहीं रहा तो फिर तो कोई गुणों की बात ही ना हो, एक ही हुआ। आप ऐसा समझ लो कि रजोगुण तो कार की ब्रेक है और तमोगुण तो उसकी ब्रेक है जो रोकता है, और रजोगुण एक्सीलेटर है जो उसको स्पीड देगा, और बैलेंस बना के रखना ये ड्राइवर का काम है, ये चेतन का काम है। ये जो उस पर बैठा हुआ है वो ब्रेक और एक्सीलेटर का जिसने ध्यान नहीं रखा वो निश्चित रूप से एक्सीडेंट में जाएगा। रोकने की जगह पर रोक लो, स्पीड की जगह पर स्पीड करो, क्योंकि अगर स्पीड वाली जगह पर भी आपने स्पीड नहीं की तो पहुंचोगे कहीं नहीं, फिर कार पर बैठने का इलाज नहीं। तो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी कहो इनको, ये वो शक्तियां हैं जो हमारे अपने अंदर, लेकिन इसमें गति वाली शक्ति बैलेंस वाली बहुत कम है। बैलेंस जिसको कह लेते हैं लोग, मतलब सत्वगुण का नाम बैलेंस है। हमारे शास्त्रों में इनके लिए मंजिलें भी तीन है। अगर एक ही गुण को बढ़ाते चले जाओ, तमोगुण बढ़ता चला जाए तो नरक है, और रजोगुण बढ़ता चला जाए तो स्वर्ग है, और सत्वगुण बढ़ता चला जाए तो मोक्ष है। लेकिन उपनिषद मोक्ष वाली बात नहीं करता। उपनिषद तो जब जन्म ही नहीं है तो मोक्ष किसका? मोक्ष उसका होता है जिसका बंधन हो। जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष किस चीज का होगा? आत्मा का कोई बंधन नहीं, सत को कोई बांध के नहीं रख सकता, इसलिए उपनिषद मोक्ष का शास्त्र नहीं। उपनिषद में अगर हम मोक्ष की बात कर रहे हैं तो वो उपनिषद नहीं, फिर हम कुछ वैसे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि मोक्ष और बंधन दोनों ही कल्पित हैं जिस तत्व में, हम उस तत्व की बात कर रहे हैं। भाव और अभाव दोनों का जो प्रकाशक है उसी को तो तत्व कहते हैं। बंधन और मोक्ष जिसमें दोनों ही कल्पित, अर्थात अज्ञान काल में हम बंधन में थे, ज्ञान काल में हम मोक्ष मुक्त हो गए, और इन दोनों अवस्थाओं को जो बतलाता है कि आप ज्ञान पहले अज्ञानी थे अब ज्ञानी हो गए, इन दोनों को बतलाने वाला वो तत्व तो इन दोनों से अलग है। इन दोनों का प्रकाशक उसी को तो आत्मा कहते हैं, वो इन दोनों से अलग, उसका इनसे कोई संबंध नहीं। तो ये जो रजोगुण है यही काम को जन्म देता है, या काम का रजोगुण बेटा भी है और बाप भी। काम से रजोगुण और बढ़ता भी है, पैदा भी होता है, और रजोगुण से काम बढ़ता है। इसीलिए जितनी भी आप इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाओ कभी वो पूरी होगी ही नहीं। जितनी भी वासनाओं की पूरी करते चले जाओ कभी वासनाएं पूरी हुई नहीं आज तक। इसीलिए उपनिषद के ऋषि हमें सावधान करते हैं कि हर कदम पर जहां आपका मन ललचा रहा है, जरा ये सोच लो कि ये वासना है कि आवश्यकता है मेरी। लेकिन आदमी अपनी वासना को ही आवश्यकता सिद्ध करता है। वो कहता है अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर ये पूरी नहीं हुई वासना तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो वो वासना को आवश्यकता सिद्ध कर रहा कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मेरे प्राण चले जाएंगे। गए नहीं आज तक किसी के भी वासनाओं की पूर्ति में, कभी कोई आज तक मरा नहीं। ये उम्मीद तो हो सकती है कि आपने खाना नहीं खाया तो हो सकता है 7 दिन 8 दिन बाद, और कई तो कईयों ने रोज व्रत वाले देखो आप लोग, 3 महीने का व्रत 4 महीने का व्रत 3-3 महीने तक कोई खाना न खा के कोई मरा नहीं आज तक। और काम की पूर्ति ना हो और कोई मर गया हो, ये तो कभी सदियों से जब से दुनिया बनी है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि काम की पूर्ति के अभाव में कोई मर गया। तो ये केवल बहाने हैं साधना में आगे ना बढ़ने के, ये केवल वो आकर्षण है जो आदमी को खींचकर पीछे की ओर ले जाते। जब तक इनसे नहीं निकलेंगे तब तक तो हम सड़क पर ही नहीं आए। राजमार्ग पर आपने चलना हो, आपने अगर जीटी रोड पर चलना ही है तो पहले सड़क पर तो आओ, तभी तो उसी तरह के रास्ते पर चलेंगे। तो जब अभी हम उस सड़क पर ही, जो सीधी रोड जा रही है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम कहते हैं, जब अभी तक हम उस सड़क पर ही नहीं हमारी गाड़ी आई, हमारी गाड़ी तो गलियों में कीचड़ में नालियों में अभी गिरे हुए हैं। पहले सड़क पर आओ तब उस रास्ते पर चलोगे। इन गुणों में घूमना अर्थात अभी वही घूम रहे, और ख्याल करना ऊंची साधना का कि हम वहां पहुंच जाएंगे, हम ऐसा पहुंच जाएंगे, ये दोनों बातें कभी संभव नहीं हुई। जब तक हर आदमी, देखो वासना इतनी प्रबल होती है कि बुद्धि को खत्म कर देती, इसीलिए उन्होंने पहले कहा आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिन। सबसे पहला काम क्या है काम का, कि वो बुद्धि को आवृत कर देता है, बुद्धि को ही समाप्त किया, ढक दिया उसने। जब कामनाएं प्रबल होती हैं, वो कामना किसी की भी तरह की हो, लेकिन उन सब कामनाओं में जिसको काम कहते हैं, जिसको सेक्स कहते हैं, वो सबसे नंबर एक पर रखा गया कि वो आदमी को अंधा कर देता है, उसमें उसको कुछ सोचता नहीं। लेकिन कामनाएं बाकी भी जितनी होती हैं तो उसको करती हैं, बुद्धि को ढक ही देती। उस समय तो ये होता है कि बस जैसे तैसे भी हो, ये पूरा हो काम मेरा, बाकी बातें हम बाद में देखें। तो आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञान का मतलब, ज्ञान मैंने आत्मा, ज्ञान मैंने प्रकाश, प्रकाश का नित्य विरोधी है आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु, और आत्मा तक ना पहुंचने देने वाला जो सबसे बड़ा रुकावट पैदा करने वाला है वो रजोगुण या काम क्रोध, एक ही बात। क्योंकि काम कहने से वो समझ में आ जाता है जल्दी से, रजोगुण की अभिव्यक्ति काम के माध्यम से होती। गुणों को हम देख नहीं सकते, लेकिन व्यक्ति के हरकतों को देखकर, अपनी हरकतों को देखकर, अगर हम जैसे ड्राइवर सावधान है कोई, जिसका एक्सीलेटर पर भी पांव है और ब्रेक पर भी पांव है और स्पीडोमीटर पर भी जिसका पांव नजर है, वो ड्राइवर ये समझ जाता है कि अब स्पीड ज्यादा हो रही है, ये है, वो कम करेगा, ब्रेक लगाएगा, कुछ भी करेगा। और रास्ते में चलते चलते साइन बोर्ड भी लगे होते हैं कि यहां पर ब्लाइंड कर्व है, यहां पर ये है, तो उनको भी वो देखता जाता है कि जहां पर कोई अंधा मोड़ है वहां बिल्कुल ही वो रोक लेता है गाड़ी, हॉर्न भी देता है, फिर आगे चलता है। नहीं तो जितने ब्लाइंड टर्न पर, कर्व पर मोड़ होते हैं, जितने लोग वहां गिरते हैं, इतने और कहीं नहीं गिरते। तो ये शास्त्र, जब आप चलते हो, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये आपके स्पीडोमीटर एक्सीलेटर ब्रेक आदि भी हैं, लेकिन शास्त्र साथ में साइन बोर्ड है। जब वो कहता है कि कामेश क्रोधेश, तो याद रखो उसने बोर्ड लगा दिया कि ये ब्लाइंड कर्व है, ठहर जाने तो मर जाए। लेकिन फिर भी आदमी की समझ में ना आए तो फिर क्रैश, या फिर उसमें क्या कर, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। जिसके पास बुद्धि भी है, समझाने वाले रास्ते वाले आपके साइन बोर्ड ही तो लगाएंगे, क्या करेंगे, जबरदस्ती तो अब आपकी कार के सामने कोई आ नहीं जाएगा कि मैंने इसको रोकना ही है। जबरदस्ती कोई आने वाला नहीं है, पुलिस वाले भी इशारा ही करेंगे। बाकी जितने भी शुभ चिंतक हैं कि आपका सफर ठीक हो, वो सड़क पर बोर्ड लगा देंगे जगह जगह पर कि आगे सड़क टूटी हुई है, यहां पर सड़क ऐसी है, यहां पर देख के चलो। लेकिन आवृतम ज्ञान ने, काम से हमें आया हुआ व्यक्ति ज्ञान अवृत्त हो गया, ज्ञान ढक गया, अकल खत्म हो गई, उस समय वो मौत में भी जाने को तैयार होता है। और अगर उसके काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध, फिर क्रोध ही क्रोध है, उसमें भी कोई काम नहीं बनता। जो बने बनाए काम हैं वो भी बिगड़ते हैं, किसी काम में मन भी नहीं लगता, झगड़ा भी यही होता रहता है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये यूं नहीं, वो नहीं। तो यहां पर जो शास्त्र हमारों ने बात बतलाई, उसमें कोई संदेह नहीं कि बात बहुत अच्छी थी। आत्मतत्व की जो हमने बातें इन दिनों में की वो बहुत अच्छी, लेकिन अच्छे को जान लेने के बाद भी अगर वो अच्छी का हमें लाभ नहीं मिला, देखो हमें हीरे की बहुत पहचान भी हो और हीरे की जानकारी भी बहुत हो कि कहां कहां से मिलते हैं, और उसको देखते ही हम बिना किसी टेस्ट के ये पहचान भी जाए कि ये किस कैटेगरी का हीरा है, कितना कीमती है, ये सब होने पर भी अगर दुर्भाग्य हो हमारा और हम हीरे से वंचित रहें तो फिर कोई उस हीरे का ज्ञान हमारे लिए दो कौड़ी का। ये जानते हुए भी कि आत्म तत्व ऐसा है, ये जानते हुए भी कि इसमें कोई दुख नहीं, इसमें कोई क्लेश नहीं, इसमें कभी कोई कष्ट नहीं, इसमें कोई द्वैत नहीं, इसमें कोई वैरी नहीं, इसमें सारे अपने ही अपने हैं, स्वाय प्रेम के और कोई दूसरी चीज नहीं है, ये जानते हुए भी फिर भी हम काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहम में, द्वेष में, ईर्ष्या में फंसे रहें तो दुर्भाग्य ही। साधना के क्षेत्र में दुर्भाग्य का मतलब होता है वासनाएं। व्यवहारिक क्षेत्र में दुर्भाग्य वही है जिसको आप ग्रहों के चक्र कह लो, कुछ भी कह। साधना में कदम रखकर भी अगर वासनाएं साथ में रह जाएं तो यही दुर्भाग्य है। वासनाएं कभी वैराग्य की ओर नहीं जाने देती। वासनाएं तो मृग तृष्णा की तरह है, तो रेत लेकिन नजर आ रहा है पानी। तो इस बात को ध्यान में रखें, रोक लगाएं वासनाओं पर ताकि हम उस तत्व की ओर आगे बढ़े। ओम शिव,
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

ताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिवस्तोत्रम। टाइटल इज बिल्वाष्टकम, सङ्ग् बै शिव अरविन्द् राजगोपालन्। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: अर्ता कविः त्वमिप्रासा समिधानदिवः आवीवासन्ति वेदसाः आनो अग्नेवयोवृतं रयिम्पावाकसंस्यं रास्वाजनुपमाते पूरुस्पृहं सोनीते सूयासस्तरं यो विस्वादयाते वसु होतामन्द्रजनानां माधो न पात्राप्राप्यमान्यस्मै प्रस्तोमायन्तुज्ञाये।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

ये सात उपमा द्वारा ये समझाया जा रहा है। रोधस्तो ये हृतः, तो ये हृतः, कोई व्यक्ति बहते हुए बड़े से नदी में गिर गया। कोई व्यक्ति नदी किनारे चल रहा था, चलते चलते असावधानी हुई और बड़े से नदी में गिर गया, जैसे पिछले बार हुआ ना केदारनाथ में, हुआ कि नहीं महाप्रलय, उसको खंड प्रलय बोलते हैं, उसको शास्त्र में क्या बोलते हैं, खंड प्रलय। हाँ, अब कोई बड़े से नदी में गिर गया हुआ तो बचना चाहता है, तो जल के प्रवाह उसको खींचे जा रहा है, बहाए लिए जा रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आधार नहीं मिल रहा है, बहाना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। तो ऐसे मरता हुआ व्यक्ति दोनों तरफ वो किनारा देखता है नदी का, और उसको उसको ये पता भी है, मैं यदि किनारे लग जाऊं तो बच जाऊं, पता भी है, तो कभी इधर के किनारे को देखता है, कभी उधर के किनारा देखता है, कभी उधर देखता है, कभी इधर देखता है, मैं कैसे किनारे लग जाऊं, कैसे किनारे लग जाऊं। जब तक वह नदी के प्रवाह में बहता रहेगा तब तक वह रोध, रोध माने नदी के प्रवाह को रोकने वाला किनारा, रोध अवरोध, अव उपसर्ग लगा दो तो क्या हुआ, अवरोध, किसका अवरोध, जल का अवरोधक, जल का अवरोध कौन है, तो किनारा, नदी के जो किनारे हैं वही ना जल के अवरोधक हैं, जल को इधर उधर बिखरने नहीं देते, रोकते हैं और सीधा समुद्र की तरफ बढ़ाते रहते हैं। जैसे जल प्रवाह में बगा बहकर जो मरणासन्न व्यक्ति, वह हमेशा किनारे को ही चाहता है, उसको कहोगे नदी में बहते हुए व्यक्ति से, मेरी एक बहुत बढ़िया लड़की है, तू शादी करेगा, क्या कहेगा वो, क्या मूर्खता की बात कर रहे हो, यहां मरे जा रहे हो तुम शादी के, पहले तो किनारा चाहिए हमको, है? बोलो, बंबई में मलबार हिल में एक फ्लैट है, तुमको फ्री दे देंगे। अरे बाबा, पहले किनारा मिले तब ना, उसका लक्ष्य क्या है, बचना, बचाएगा कौन, किनारा, जल का प्रवाह तो उसको बचा नहीं सकता है, वो तो हर हालत में मरेगा। इसीलिए तोय हृदय, तोय हृता, हृता जल के द्वारा अपहरित, यानी जल के प्रवाह में खींचते हुए बहता हुआ जाने वाला व्यक्ति किसको चाहता है, रोधः, रोध माने तोय रोधः, जल को रोकने वाला किनारा चाहता है। रोधस्तो यरिता श्रमेण पथिक छायाम, पथिक पैदल चलने वाला यात्री, पदयात्री, पथिक गर्मी से संतप्त हुआ हुआ पैदल चलने वाला पथिक क्या चाहता है, तरोर छायाम, कोई घने पत्ते वाले पेड़ की छाया चाहता है, समझे कि नहीं, तरोर छायाम, पेड़ की छाया, शीतल छाया कौन चाहता है, पथिक श्रमेण, श्रम द्वारा यानी थकान से थका हुआ पैदल चलते चलते श्रांत हुआ हुआ थका हुआ यात्री पथिक, तरोर छायाम, जैसे पेड़ की छाया को चाहता है। वृष्टि तो भीतः,
प्रचंड मूसलाधार पानी में भिजा हुआ व्यक्ति स्वस्थ गृहम, वह कहीं न कहीं प्रत्यक्षालय, कोई न कोई घर, कोई धर्मशाला, कोई मजबूत आश्रय चाहता है। कौन? दृष्टितो भीता, बारिश से डरा हुआ व्यक्ति, वह कोई घर चाहता है, मजबूत घर की इच्छा करता है। गृहस्थम अतिथिर, शाम के समय का जो यात्री है अतिथि, वह क्या चाहता है? किसी गांव में मुझे आश्रय देने वाला कोई अच्छा घर मिले, गृहस्थी का कुटुंबी परिवार मिले, तो जाके मुझे सोने के लिए भी देवे, खाने के लिए भी देवे, हाँ, भोजन की व्यवस्था करे, विश्राम की व्यवस्था करे। अतिथिर गृहम, गृहस्थम, अच्छे उदार मना गृहस्थों की इच्छा करता है अतिथि। गृहस्थम अतिथिर दीन प्रभुम धार्मिकम, जो गरीब है, दीन है, दुखी है, वह प्रभुम धार्मिकम, कैसा चाहिए प्रभु? धार्मिकम प्रभु, मन में पूरा दया और धर्म से भरा हुआ कोई समृद्धशाली सेठ की कामना करता है। कौन? दीन, दीन व्यक्ति धार्मिक समृद्धशाली सेठ की इच्छा करता है। कोई सेठ आवे, लेकिन सेठ के पास धन तो होगा, मन नहीं होगा तो सेठ क्या काम करेगा? इसलिए धार्मिकम, मेरी दीनता को समझने वाला धार्मिक भावुक सेठ की कामना करता है। दीनः प्रभुम धार्मिकम दीपम संतमसा कुलश्च, रात्रि में अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं देख रहा है अंधकार में, तो वह व्यक्ति सबसे पहले क्या चाहता है? दीपम, वो दियो को, बत्ती को चाहता है, रोशनी को चाहता है। दीपम संतमसा कुलश्च सिकिनम सीतावृत, ठंडियों से कांपता हुआ व्यक्ति किसको चाहता है? सिखी को। सिखी माने अग्नि, अग्नि जलती है तो शिखा उत्पन्न होता है ना, है? या सिखी माने अग्नि। सीतावृत, ठंडियों से कांपता हुआ व्यक्ति किसको चाहता है? अग्नि को। सिकिनम तथा त्वम, यथा तथा, जैसे तोय हृत रोधः पथिक श्रमेण छायाम तरोर, तरोर छायाम वृष्टितो भीत स्वस्थ गृहम अतिथिर गृहस्थम दीनः धार्मिकम प्रभुम संतमसाकुल दीपम सीतावृतः सिखिनम तथा यथा तथा। चेतः, हे शिव, मेरा चित्त भी इसी तरह सर्वभयापहम, समस्त भयों को हरण करने वाला संबोहो पदाम्बोरुहम, भगवान शिव के चरण रूपी कमल, संबो पद अंबु उह, चरण रूपी कमल, ब्रज सर्व पहाप सुखम ब्रज, तुम उनके चरण में पहुंचो,
तो तुम्हें सर्व भयापह, न तो नदी में बहने का डर रहेगा न नदी यात्रा में थकान होने का श्रम का डर रहेगा, न तो वृष्टि पानी में भीज कर मरने का डर रहेगा। और उनके चरण में जाओ तो भोजन भी पर्याप्त मिल जाएगा, गृहस्थियों की किसी की जरूरत नहीं। और उनके चरण में जाओगे तो तुम्हारी दीनता भी खत्म, कोई सेठ साठ की जरूरत नहीं है। अरे सेठ को सेठ बनाने वाला तो वही तो है, हाँ? उनके चरण में जाओगे तो अंधकार में बैठना नहीं पड़ेगा। भगवान शिव के चरण में रहोगे तो शीत ठंडी तुमको क्या छोएगी, बोलो, कुछ नहीं छोने वाली है, हाँ? वो तो बर्फ में भी राख लपेट कर बैठ जाते हैं, वहां तो उनके चरणों में तो बस ऐसे आनंद आएगा, ऐसे गर्मी है कि क्या कहना। मया दस्याद अग्निस्तपति, उपनिषद में कहा है, कठोपनिषद में यमराज ने, भया दस्याद अग्निस्तपति, अग्नि हमेशा गर्म क्यों रहती है, उस परमात्मा के डर के मारे कभी शीतल नहीं होती है, वो उसी के डर से हमेशा गर्म रहता है, रहती है अग्नि। और जिसके डर से अग्नि गर्म रहती है तो उसके चरण में बैठोगे तो तुम्हें ठंडी से मरना पड़ेगा, बोलो, हाँ? ये भी बड़ा सुंदर है, यहां चित्त को समझा रहे हैं। मेरा चित्त भी ठीक इसी तरह से, कोई ना कोई चाहता है ये चित्त और किसी के शरण में मत जा। सर्व भयापहम संभो हो पदाम्बो रूहम ब्रजा, बस उनके चरण के शरण में जा, सारा डर भय सब खत्म हो जाएगा।

ஸ்ரீஹம் கிரகஸ்தமதிதிர் தீனஹ ப்ரபும் தார்மிகம் தீபம் சந்தமசா குலச்ச சிகினம் சீதாபிரதஸ்தும் ததா சேத சர்வ பயாபஹம் ப்ரஜ சுகம் சம்போ பதாம்போருஹம். அங்கோலம் நிஜஸ்பீஜ சந்ததிரயஸ் காந்தோபலம் சூச்சிகா சாத்வீ நைஜ விபும் லதா சிதிருஹோ சிந்து சரித் வல்லபம் ப்ராப்னோதீய யதா ததா பசுபதே பாதாரவிந்தத்வயம் சேதோ விருத்திருபேத்யதிஷ்டதி சதா சா பக்திரித்யுச்சதே. और दृष्टांत देकर समझाते हैं. अंकोलम ये वृक्ष जाति है, अंकोल वृक्ष है. निज बीज संतति, उस अंकोल वृक्ष का जो फल है उन फलों का नियम है, पककर पेड़ से गिरते ही वह इधर उधर नहीं भागते, उस पेड़ के मूल में सब एकत्र हो जाते हैं अपने आप ही. हाँ, वो फल की विशेषता है, इधर उधर नहीं जाते. पोखरा में हमारा आश्रम है, पहाड़ की चोटी पर है, 500 रुद्राक्ष के पेड़ है. कितनी? हाँ, पूरा रुद्रवन है, रुद्रवन 500 रुद्राक्ष के पेड़ है. अब फल लगते हैं खूब रुद्राक्ष, बड़े दाने वाले, पांच मुखी, छह मुखी, चार मुखी, तीन मुखी, फल लगते हैं रुद्राक्ष, बोरा का बोरा फल निकलते. हम लोग उसके कोई परवाह नहीं करते. और रुद्राक्ष के क्या है, फल इतना लगता है और पकने के बाद पक्षी खूब खाते हैं उसको. उसके बाहर जो होता है गुदा छिलका, वो पकता है तो एकदम नीला हो जाता है, बैंगनी कलर का होता है. कच्चे में हरा होता है, पकने के बाद बैंगनी कलर का नीला होता है. वो पक्षी को वो इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, रात भर पक्षी उसी को खाते. रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष खोजने का वो एक दाना नहीं मिलेगा. होता क्या है, जब फल पकते हैं तो रुद्राक्ष के पेड़ के पत्ते भी कम होते हैं, और वो पक्षी फिर वो पत्ते जहां कम होंगे वहां नहीं बैठता है, आएगा उड़कर जो पका हुआ फल होगा उसको तोड़ेगा, जहां घने पत्ते होंगे पेड़ उस पेड़ में जाकर आराम से छुपकर पत्ते के नीचे छुपकर खाता रहेगा, और ऊपर के सब गुदा खाकर छिलका खाकर फिर वो जो नीचे का दाना है वो कठोर है, वो दाना तो खाएगा नहीं, वो नीचे गिरता है. तो हमसे पूछते हैं महाराज रुद्राक्ष, बोले उस पेड़ के नीचे जाकर खोजो. वो रुद्राक्ष का पेड़ है, बोले रुद्राक्ष पेड़ नहीं है. पर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं है तो फिर वहां कैसे रुद्राक्ष मिलेगा, बोले यही तो विशेषता है, रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष नहीं मिलते. जो रुद्राक्ष नहीं है वहां नारेश्वर का पेड़ है, बहुत घना पत्ते हैं, उसमें छुपकर रात भर वही खाते रहते हैं, वही नीचे गिराते रहते हैं, उस पेड़ के नीचे रुद्राक्ष मिलते हैं. इसी तरह अंकोल नामक जो वृक्ष है, कि पोखरा के ये वर्णन सुनकर तुम्हारे मन में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, है? और वहां से हिमालय ऐसा दिखता है, पर्वत हिम श्रृंखला, क्या आनंद, ऐसे लगे कि तुम उसको पकड़ लो हिमाल को, बर्फीले हिमाल. लेकिन तुम डर जाओगे फिर, मारा ठंडी लगेगी, लेकिन बड़ा आनंद आएगा, ठंडी भी नहीं लगती. हाँ, एक वहां की विशेषता है, हिमाल नजदीक होने पर भी ठंडी नहीं लगती, और इधर हिमाल दूर होने पर भी ठंडी लगती. बिहार है, दिल्ली है, लू माने शीतलहरी चलती है, वहां शीतलहरी नहीं चलती. कारण क्या है, प्रातः काल सूर्य उदय होते ही दिन भर धूप इतना खिला रहता है
इतना धूप खिला रहता है कि दिन भर एनर्जी खूब गर्म होता है, घर भी गर्म रहेगा, कपड़े भी गर्म हो जाएंगे, शरीर भी गर्म, तो ठंडी नहीं लगती। और इधर क्या होता है, जबकि बहुत दूर है हिमालय, लेकिन ये धुआं और पोल्यूशन के चलते यहां धूप नहीं खिलता, धूप में वो तेज नहीं रहता यहां, इसलिए यहां ठंडी बनी रहती है, ज्यादा ठंडी, और वहां इतना ज्यादा ठंडी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जंगल तो है ही है, लकड़ी खूब मिलेगा वहां, जला देंगे लकड़ी, चिंता न करो, आओ जरूर, बनाओ प्रोग्राम आने का। रुद्राक्ष मिलेगा, कार्तिक में रुद्राक्ष पकता है, दिवाली दशहरे के समय में रुद्राक्ष पकता है, इस समय तो फूल आ गया है। अंकोलम निज बीज संतति, अंकोल नामक जो वृक्ष है उसके जो बीज हैं वो सब पेड़ से निकलते उसी के जड़ में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। अयस्कांतोपलम सूचिका, सूचिका माने सुई या लोहा, लोहे के टुकड़ा, सूचिका का अर्थ लोहे का टुकड़ा। अयस्कांतोपलम चुंबक, चुंबक की तरफ अपने आप ही खींचा जाता है और चुंबक से जुड़ जाता है वो। इसी तरह साध्वी नैज विभुम, और पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही चाहती है, पति के अलावा और किसी का स्मरण नहीं करेगी, जैसे सीता का था, सीता राम के अलावा और किसी का स्मरण नहीं कर सकती। साध्वी, साध्वी माने पतिव्रता स्त्री, नैज विभुम, निज विभुम माने अपनी, अपने पति के अलावा दूसरे की कामना नहीं करती। लता क्षितिरुहम, और जो लता है बेल है वह पेड़ को चाहती है क्योंकि उसका सहारा वही है। क्षितिरुहम माने पेड़। सिंधु सरिद बल्लवम, सिंधु माने नदी, नदी किसको चाहते हैं, सरित बल्लभम समुद्र को प्राप्नोती, तब जाकर इनको आनंद होता है। साध्वी को अपना पति प्राप्त होता है तो उसको परम आनंद की अनुभूति होती है, नदियों को समुद्र प्राप्त होता है तो नदियां शांत हो जाती हैं, लता पेड़ को प्राप्त होते हैं तो उसके सहारे से बहुत ऊपर उठ सकती है, अन्यथा सिकुड़ जाती है लता। प्राप्नोती है यथा, ये 16 दृष्टांत हंस पद्म वनम समिच्छति से लेकर यहां तक सरित बल्लभम तक 16 दृष्टांत हैं। यथा जैसे, तथा उसी तरह, हे पशुपते पादार विंद द्वयम, आपके दोनों चरण युगल चेतो वृत्ति रूपेत्य तिष्ठति सदा, मेरा चित्त रूपी वृत्ति आपके चरण को प्राप्त करने पर ही परम आनंद और परम शांति को प्राप्त होवेंगे, वही मेरे चित्त वृत्ति का आपके प्रति का भक्ति है। इसलिए आपके जैसे पत्नी पतिव्रता पति अपने पति के अलावा दूसरे का स्मरण नहीं कर सकती, इसी तरह मेरा चित्त आपके चरण युगल के अलावा और किसी को इच्छा चाहते नहीं, यही सा भक्ति रीति उच्यते, मेरे चित्त की जो वृत्ति है वही आपके प्रति की परम भक्ति है। और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योम।

14वें श्लोक में निर्विशेष चैतन्य के ऊपर अविद्या का अध्यारोप किया और इस श्लोक में कामना का नाश और कामना के नाश होते ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। 16वें श्लोक में गंगा जी का अवतरण है, मही पादा दिघाता ब्रहति सहसा संशय पदम से। तो शिव महिमन का आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों ही अर्थ है। तो कल हम लोगों ने तो जो चिंतन किया था वह आध्यात्मिक था और इसका यदि हम आदि दैविक चिंतन करें, जैसा कि वेदांत ने बतलाया है कि मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर है। दार्शनिक जगत में बड़ा भारी विवाद है कि अविद्या का आश्रय जीव है कि परमेश्वर। कुछ दार्शनिक तो मानते हैं कि अविद्या का आश्रय जीव है और अविद्या का विषय ब्रह्मा, और कुछ ऐसी मान्यता है कि आश्रय विषय दोनों ही ब्रह्म ही है। जीव इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं अहम अज्ञा, मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, मैं खल, मैं कामी, ऐसा जो हम कथन करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस अज्ञत मतलब कि अज्ञान का आश्रय है जीव, और कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता हूं। शास्त्रों से तो सुनने में आता है परंतु नमे भाति, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। इस अविद्या का विषय ब्रह्मा, इस अनुभूति के द्वारा कुछ दार्शनिक मानते हैं कि अहम आग के द्वारा अज्ञान का आश्रय जीव, और मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं तो ब्रह्म हो गया विषय। परंतु मुख्य वेदांत सिद्धांत है जो विवरणकार, क्योंकि वेदांत में दो धाराएं हैं, भामती और विवरण। तो भामतीकार तो मानते हैं कि विद्या का आश्रय जीव, अविद्या का विषय ब्रह्मा, ये भामतीकार का सिद्धांत। और विवरणकार के अनुसार अविद्या का आश्रय विषय दोनों ही निर्विशेष चैतन्य है। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विशेष चैतन्य केवला, पूर्व श्री तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर। अविद्या से उत्तर में सिद्ध होने वाला जो जीव है वह न आश्रय बनता है न विषय बनता है, क्योंकि अविद्या के बाद में अंतःकरण का निर्माण होगा। अंतःकरण की उपाधि वाले को जीव कहते हैं। तो अविद्या तो पहले हुई, अंतःकरण बाद में हुआ, और अंतःकरण की उपाधि वाले को जीव कहते हैं। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है, तो इसलिए जीव अविद्या का आश्रय नहीं बन सकता है। पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर, पश्चिम मतलब जो बाद में होने वाला है। यह जीव न अविद्या का आश्रय है न गोचर मतलब विषय है, ऐसा विवरण प्रस्थान की मान्यता है। तो अविद्या का आश्रय आधार और विषय दोनों ही निर्विशेष चैतन्य ब्रह्म है। तो यहाँ पर जो भगवान साक्षात निर्विशेष शांतम स्वयं अद्वैतम जो शिव तत्व है, उसके ऊपर इस लीला के द्वारा अविद्या का अध्यारोप किया। हलाहल विष कलमास जो है ना अविद्या है, अविद्या को हम लोग हजम नहीं कर पाते हैं। योग दर्शन में आता है अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या।
अविद्या को परिभाषित किया है कि जो अनित्य में नित्यत्व बुद्धि कर दे, असूची में सुचित्त बुद्धि करे, दुख में सुख बुद्धि कर दे, अनात्मा में आत्मा बुद्धि करे, उसका नाम है अविद्या। और यह जो अविद्या है, अविद्या के होने से ही ये दुख उत्पन्न होता है। असूची का अर्थ होता है ये शरीर हमारा अपवित्र है, हाड मांस चाम का एक तरह से पिंड है, इस पिंड में सुचित्त बुद्धि हो जाता है। और यह जो शरीर जन्मा है तो मरेगा, इसमें नित्यत्व बुद्धि हो जाती है। इसके बाद में जो दुखमय है उसमें सुख बुद्धि हो जाती है कि देह में सुख है, इंद्रियों के विषय से सुख हासिल होगा, यह सुख बुद्धि भी अविद्या है। और चौथी है या जो अनात्मा है, उस अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि करना। अनात्मा मतलब कि कभी भी यह शरीर हमारा न कभी हुआ है, न होगा, न हो सकता है। यदि हमारे बस में होता जो शरीर है तो आप इसको करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक स्थायी रखते। लोग कोशिश करते भी हैं, पश्चिम जगत में कुछ ऐसे भी आविष्कार किए गए हैं कि शरीर के ऊपर ऐसे दवाओं का लेप करके रखते हैं, और कुछ एक लोगों के रखे भी गए हैं। परंतु यह कितना भी संभालो कभी न कभी यह जीर्ण से नष्ट होगा ही, क्योंकि यह शरीर अनात्मा है। अनात्मा मतलब कि आत्मा से भिन्न है, आपका अपना नहीं, ये तो पंचभूतों का पिंड है। थोड़ा सा पृथ्वी संस लिया, थोड़ा जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, चार भूतों का थोड़ा थोड़ा लिया और पृथ्वी का लिया 50% और बना दिया पिंड। अब इस पिंड में इतना अभिमान हो गया कि यह मेरा, इसी का नाम है अविद्या। और जब अविद्या आती है तो अविद्या से कामना, कामना से कर्म, कर्म से फिर सुख दुख होते हैं, सुख दुख से राग द्वेष, यही संसार का चक्र है। सबके मूल में अविद्या है। जैसे अविद्या आई तुरंत कामना होगी, कामना होगी तो कर्म होगा, कर्म होगा तो सुख दुख फल होंगे, सुख होगा तो राग, दुख होगा तो द्वेष, यही सृष्टि चक्र है। तो यहां पर भगवान शंकर जो अपने गले में हलाहल विष धारण किए हैं, यह निर्विशेष चैतन्य के ऊपर अविद्या का अध्यारोप है। वह जो अविद्या का अध्यारोप है इससे भगवान की शोभा बढ़ती है। मायावच्छिन्न चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। अब माया उपाधि हटा दे तो निर्विशेष चैतन्य है। जैसे जब तक दर्पण के समक्ष कोई उपाधियां नहीं है, नाम रूप नहीं, तब तक निर्विशेष है। जैसे दर्पण के सामने कोई उपाधि आती है, दर्पण में वह दृश्य दिखाई देने लगता है। ऐसे ही ये जो भगवान शंकर ने हलाहल विष को अपने गले में धारण किया तो मानो कि माया को उन्होंने अपने आप में अध्यारोपित कर लिया। क्योंकि माया को, अविद्या को हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं, और इसका नाश केवल ज्ञान के द्वारा ही होता है, बिना ज्ञान के नाश हो नहीं सकता है। दूसरा विशेषण दिया था कि भगवान अविद्या को धारण करने के बाद भी भुवन भंग व्यसनिनः, हमारे पास अविद्या होती है तो हम विद्या से परेशान होते हैं और दूसरे को ही परेशानी में डालते हैं। परंतु भगवान की ऐसी विशेषता है, कुछ अविद्या को अपने गले में तो धारण कर लिया और धारण करने के बाद भी भुवन भय भंग व्यसनिनः, अविद्या से ही संसार को खतरा है,
जैसे कि देवता और असुर दोनों ने मिल करके प्रयास किया, पुरुषार्थ किया अमृत को हासिल करना, परंतु उनके हाथ में हलाल विष लगा। ऐसे ही चाहे हमारा देश हो या पश्चिम जगत, ये सभी मिल करके नाना प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोलते हैं, शिक्षा का विस्तार करते हैं। एक ही मकसद होता है कि इससे हमें शांति मिले, अमृत मिले, आनंद की उपलब्धि हो, परंतु हाथ में लगते हैं विनाश के हथियार, एटम बम, परमाणु बम। और लोग तो संसार से भयभीत होकर चंद्र ग्रह पर, मंगल ग्रह पर आरक्षित करने लगे हैं, वहां आरक्षण चालू है। परंतु आरक्षण के पूर्व ही ऐसे ऐसे धमाके होते हैं कि आरक्षण करने वाले समाप्त हो जाते हैं। तो देखो, अमृत का मंथन आज भी चल रहा है, क्षीर सागर का मंथन आज भी चल रहा है, परंतु यदि हम भगवान के द्वारा करेंगे, अधिष्ठान चैतन्य को निमित्त बनाकर करेंगे, तब तो अमृत स्रवित होगा, अन्यथा हमारे हाथ में वही हलाहल बीज जैसे हथियार लगेंगे। तो यहाँ पर भगवान शंकर हलाहल बीज रूपी अविद्या को धारण करने के बाद भी संसार के भय को भंग करते रहते हैं। संसार से भय क्यों होता है? इसका उत्तर शुक्ल यजुर्वेदी और बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है, सबको मालूम भी होगा। द्वितीयाद्वय भयम भवति, बस ये भय का सूत्र है। हमारे जीवन में भय क्यों होता है? तो भगवती श्रुति कहती है, द्वितीयाद्वय भयम भवति, जहां पर द्वैत हुआ वहीं पर भय खड़ा। परिवार में जब तक द्वैत बुद्धि नहीं होती है, तब तक बहुत अच्छी तरह से परिवार सुचारू ढंग से चलता है।

0: रावण जो है बाबा जी का वेश बना करके सीता का हरण कर लिया। अब भगवान राम हा सीते रोने लगे। ऋषियों ने कहा कि पता लगाओ ये राम जी इतने जोर से क्यों रो रहे हैं। पता लगाया, मालूम पड़ा कि सीता जी को रावण ले गया। सबने आपत्कालीन मीटिंग बैठाई, बोले कि देखो सीता रखोगे तो ये दूसरा रावण ले जाएगा हमारे सीता को भी। सब उठा उठा नदी में फेंक दिए। तो देखो पहले अध्यारोप किया, पत्थर का सीता बनाया सबने, परंतु अध्यारोप करते ही तत्काल उन्हें अनुभव भी हो गया। भगवान इसलिए भी जल्दबाजी में लीला की क्योंकि मालूम था कि एक बार सीता में प्राण फूंक दिया तो फिर इन्हें भी बहुत कुछ मुसीबत सहना पड़ेगा। इसलिए भगवान दिखा दिए कि सीता को संभालने के लिए सामर्थ्य चाहिए, राम बनना पड़ेगा। राम की उपासना आप करते हैं पर अभी राम नहीं बने हो, तो यहां पर भी जो अध्यारोप किया भगवान शंकर के ऊपर अविद्या का, ऐसे यहां पर जो जीव है, जीव की जो अपनी जैविक अविद्या है, ईश्वरीय जो अविद्या है वह तो समष्टि प्रपंच का उपादान कारण है और निमित्त चैतन्य है। इसको अलग अलग समझ के रखना। जो ईश्वरीय अविद्या है वह तो समष्टि प्रपंच का उपादान कारण है और चैतन्य निमित्त कारण है। और यहां पर जो जीव की अपनी अविद्या है यह भी जैविक प्रपंच का उपादान है। और जो कुटस्थ है, कुटस्थ मतलब मय का जो शोधित अंश है जिसको हम साक्षी भी कहते हैं, कुटस्थ भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, यह निमित्त है। और जैविक सृष्टि ही आपको बंधन में डाल रही, ईश्वरीय सृष्टि किसी के लिए बंधन कारक नहीं है क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। जैसे कि माता पिता कुछ भी करते हैं तो अपने लाड़ले के हित के लिए, किसान खेती करता है, खेती के चारों तरफ कटीले तार को लगाता है या कटीले वृक्षों को लगाता है ताकि फसल सुरक्षित रहे। तो भगवान ने कांटा बनाया है उसका भी मकसद है, कांटा भी अपने आप में सफल है, सार्थक है, पर कांटे का कहां उपयोग करना यह हमारे ऊपर निर्भर है। कांटे को रास्ते में डाल देंगे तो आपको भी चुभेगा, दूसरे को भी, और उसी कांटे के द्वारा खेती के चारों तरफ लगा दें तो सुरक्षा का काम करेगा। तो जो जैविक सृष्टि है जिसको कि हमने बनाया है वही हमारे लिए बंधन कारक हो गया। भगवान की सृष्टि तो भगवान के लिए कोई बंधन कारक नहीं होती, पर जीव जो सृष्टि किया हो उसके लिए बंधन कारक हो गई। जब किसी भी घर में, किसी भी समुदाय वर्ग मजहब में जब बालक उत्पन्न होता है और बिल्कुल निर्गुण विशेष होता है, उसको यह भी भान नहीं होता है कि मैं जो है हिंदू हूं कि मुसलमान हूं कि इंडियन हूं कि अमेरिकन हूं, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे ही दो चार वर्ष का हुआ कि हम धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तू जो है इंडियन है, अमेरिकन है, जापानीज है, इसके बाद भी संतोष नहीं होता है तो कहते कि तू जो है हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम शिवाय नमः। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Toh phir kya rahega? Purnam eva avashishyate. यानी जैसे समझ लो कि दृष्टांत में जैसे चल रहे जो घड़ा है उसको पूर्ण कहा ने, तो वो पूर्णस्य पूर्णम को आधा है, यानी कि वो पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए। निकालना यानी कि निकालने का अभिप्राय है अविद्या का तिरस्कार कर दिया जाए, आकार का तिरस्कार कर दिया जाए, घट है ऐसा जो हम व्यवहारिक प्रयोग कर रहे थे उनका तिरस्कार कर दिया जाए, तो फिर क्या बचेगा? मिट्टी ही पूर्णम एव अवशिष्यते। अतः पूर्णस्य पूर्णम आदाय, यहां पर जो पूर्णस्य है उससे लेना है, जो घट को जैसे पूर्ण कहा था ना, वो घट को हमने पूर्ण कहा था ना, तो वो पूर्ण का पूर्ण को, पूर्णस्य कार्यात्मक जो ब्रह्म दृष्टांत में कार्यात्मक ब्रह्म, उनका जो पूर्णम पूर्णम आदाय, या दृष्टांत में लीजिए घड़े के अंदर जो मृतिका है उनका ग्रहण किया जाए, तो नाम रूप का क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। तो तिरस्कार होने के बाद बचेगा क्या? तो कहा पूर्णम एव पूर्णत्वम, एक रसत्व जो लक्षण है वो निरंतर, जो प्रज्ञान गण जिसको कहा एक रस का, वो स्वरूप ही केवल अवशिष्यते, यानी कि बचता है और कुछ नहीं रहता। तो नाम और रूप का त्याग करना ही साधना है, इसी के लिए प्रयत्न करना है, ब्रह्म को उत्पन्न नहीं करना है, किंतु नाम रूप उपाधि का परित्याग करना ही ये मंत्र का तात्पर्य है। यदि हमारी नाम और रूपाकार दृष्टि हट जाए, नाम और रूप निकल जाए, तो सर्वत्र हमको एकमात्र ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचेगा। इसको आप सर्प और रज्जु में घटाइए तब भी ये सरलता से इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे सर्प है उसके अंदर जो रज्जु है वो रज्जु ही भरी है, सारे सर्प के अंदर क्या भरा है? सर्प में क्या भरा है? भ्रांति स्थल जो सर्प है, जहां पर आपको सर्प की भ्रांति हो रही, ऐसे स्थल में सर्प दिख रहा है तो सर्प के अंदर क्या भरा है? रज्जु ही भरी है, सर्प में रज्जु ही भरी है, इसलिए रज्जु को क्या कहेंगे? पूर्ण कहेंगे। रज्जु क्या है? पूर्ण है। अब वो जो पूर्ण है, पूर्ण अब सर्प भी पूर्ण है और रज्जु भी पूर्ण है, ऐसा लेना होगा। जैसे सर्प रज्जु पूर्ण कहा तो वो अधः पूर्णम, और सर्प को पूर्ण कहेंगे तो इदम पूर्णम, हो गया। अब ये कहेंगे कि पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, क्योंकि वो जो सर्प है उसकी प्रतीति कहां हो रही है? रज्जु में। रज्जु नहीं होती तो सर्प की प्रतीति नहीं हो रही है, रज्जु में ही सर्प उत्पन्न होता है, रज्जु नहीं होते तो सर्प की प्रतीति नहीं होती। इसलिए उस पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले, पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले तो क्या अवशिष्ट रहेगा? रज्जु रूपी पूर्ण ही अवशिष्ट रहेगा। सर्प क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा, सर्प रहेगा नहीं, सर्प तो था ही नहीं, वो तो भ्रांति से क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। तो यदि पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले, इदम शब्द से जिसको कहा वो सर्प, उनको पूर्ण कहा, उस पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले तो सर्प वहां रहेगा ही नहीं, रज्जु रूपी पूर्ण ही अवशिष्ट रह जाएगा। तो इससे तत् और त्वम की एकता बताई गई, और इस मंत्र से ये भी सिद्ध हो गया कि ये जो सारा संसार है वो केवल प्रतीति मात्र है, मिथ्या है, वस्तु सत नहीं है। तो ये जो मंत्र है वो संपूर्ण वेदांत का जो है अर्थ इसमें भरा है, और उनका ये प्रतिनिधि मंत्र है, मानो वेदांत का सिद्धांत इसमें बिंदु रूप से भरा है। इसलिए ये निश्चित हो गया कि ये संसार है वो मिथ्या है। भगवान भाष्यकार इसलिए संसार की सत्ता को मिथ्या कहते हैं, और मिथ्या वो है जो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और सद असत उभय भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम भी ये सोचे कि ये जो त्वम है, त्वम यानी जीव भाव, वो जीव भाव भी कब तक है, जब उपाधि है, और उपाधि कौन सी उपाधि लगी हुई है बताओ, अविद्या। इसलिए कारण शरीर है, तब तक जो है वो सूक्ष्म शरीर भी रहेगा और ये स्थूल शरीर सारा संसार रहेगा, और कारण शरीर अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो सर्वत्र मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का अनुभव हो जाएगा। इसलिए कल बताया था कि ये जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद का मंगल पाठ है। ईशावास्य उपनिषद है वो मंत्र भाग की उपनिषद है, और बृहदारण्यक उपनिषद है वो ब्राह्मण भाग की है। तो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र जो है, मंत्र रूप जो ईशावास्य उपनिषद का ही व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद, मंत्र का व्याख्यान ही ब्राह्मण है। इसलिए वहां पर ये बताया था ना, ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीद तद आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति, और तस्मात् तत्सर्वम अभवत, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार यदि अविद्या की निवृत्ति हो जाए, जैसे कहा ना पूर्णस्य पूर्णम आदाय, आदाय यानी ग्रहण कर लेने पर, यानी आत्म स्वरूप से एक रसत्व को जब हम आपादित कर लेंगे, यानी कि विद्या के द्वारा जब अविद्या का तिरस्कार हो जाएगा, उपाधिक जो संसार है उनकी निवृत्ति हो जाएगी, तो सर्वत्र हमको मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, इस प्रकार का अनुभव हो जाता है। इसलिए तत् और त्वम की एकता इस मंत्र में बताई गई है, जो संपूर्ण उपनिषद का तात्पर्य है। अब इसके बाद जो है एक और मंगल पाठ है, उनका हम विचार करते हैं। सामवेदी उपनिषद का यह मंगल पाठ है, सामवेदी केनोपनिषद, और छांदोग्य में भी ये पाया जाता है। सामवेद की तलवकार शाखा की कैनोपनिषद है, वो भी मंत्र रूप है और उनका ही व्याख्यान है छांदोग्य उपनिषद। इसलिए अभी जैसे कहा कि मंत्र का व्याख्यान ही ब्राह्मण होता है, तो कैनोपनिषद है वो मंत्र भाग की उपनिषद हुई और छांदोग्य है वो ब्राह्मण भाग की। देखो उच्चारण करते हैं,

0: देखिए सर्वत्र ये जो तीन बार शांति शांति शांति का जो उच्चारण करते हैं उसका सर्वत्र अभिप्राय तीन प्रकार की शांति को लेकर के है। तीन ताप की निवृत्ति के लिए है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। ये तीनों ताप शांत हो, सभी वैदिक शांति पाठ में ये एक ही तात्पर्य से ये कहा गया है। तो देखिए ये जो है इसमें बहुत ही दिव्य भावना की गई है। उपनिषद का अध्ययन करते समय हमारे जो अंग है वो स्थिर हो जाए, बलवान हो जाए, पुष्ट हो जाए, इसलिए ये प्रार्थना की गई है। क्योंकि अध्ययन करते समय शरीर की स्थिरता भी आवश्यक है, कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की स्थिरता भी आवश्यक है और प्राण की स्थिरता भी अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए यहां पर ये भावना की गई कि मेरे ये जो सब अंग है वो आप्यायन्तु, ब्रह्म का जो ध्यान है उनके अनुकूल मेरे सब अंग हो जाए। आप्यायन्तु किसके लिए कह रहे हैं? ममांगानी आप्यायन्तु, मुमुक्षु प्रार्थना कर रहे, इसलिए कहा मम अंगानी आप्यायन्तु। उपनिषद पाठ करते समय जो मुमुक्षु बैठे हैं वो आदि में ऐसी भावना करते हैं कि मेरे जो अंग है मम मुमुक्षु, मुमुक्षु के लिए प्रार्थना है, इसलिए मुमुक्षु कहते हैं कि ममांगानी आप्यायन्तु। अंगानी, अंगानी यानी जो कर चरण वगैरह है वो सब अंग है, वो आप्यायन्तु यानी कि वृद्धिं प्राप्नुवन्तु, वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे यानी कि उनकी स्वस्थता बनी रहे। कौन कौन है वो अंग उसको एक एक से बता रहे। देखो वाक, प्राण, चक्षुः, श्रोत्रम। तो वाक यहां पर केवल वाणी को ही ग्रहण किया है, किंतु इसके ऊपर जो भाष्य टीका लिखने वाले आचार्य कहते हैं कि वाणी से पांचों कर्मेंद्रिय ग्रहण कर लेनी है। कर्मेंद्रिया कितनी है?
1: पांच
0: है कि नहीं? अब केवल वाणी का ही नाम क्यों लिया, वाक का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि कर्मेंद्रियों में ये जो वागिंद्री है वो प्रधान है, इसलिए प्रधान के ग्रहण करने से जो अप्रधान है उनका भी ग्रहण हो जाता है। इसलिए कहा जो वागिंद्री है वो कर्मेंद्रियाणाम उपलक्षणम, कर्मेंद्रियों का भी वो उपलक्षण है। अभिप्राय यह हुआ कि मेरी जो भी कर्मेंद्रिया है वो आप्यायन्तु, ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए, ये वेदाध्ययन के अनुकूल हो जाए। उपनिषद का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है उनको जानने में ये समर्थ हो जाए। समर्थ कब होगी? जब कर्मेंद्रिया इसमें लगेगी, इसी ओर लगे। अभिप्राय यह है कि मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा इसे कार्य में लगू, यानी मेरे वाणी के द्वारा केवल ब्रह्म का ही उच्चारण हो, मेरे हाथ के द्वारा उनका ही ग्रहण हो, वाणी के द्वारा उनका वदन हो और हाथ के द्वारा केवल उनका ही ग्रहण हो। हाथ क्या करता है? हाथ का कर्म है, कार्य है ग्रहण करना, और वाणी का कार्य है वदन बोलना, और पैर का कार्य है चलना। तो मेरे पैर के द्वारा मैं उसी ओर चलू, अंधकार से प्रकाश की ओर मैं चलू। प्रकाश क्या है? वही परम, इसलिए कहेगी ना तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। यह अभिप्राय इसमें भरा हुआ, अंधकार से मैं प्रकाश की ओर चलू, असत से मैं सत की ओर चलू, और मृत्यु से मैं अमृत की ओर चलू। मेरे पैर के द्वारा मैं चलू तो मैं यही ब्रह्म की ही प्रदक्षिणा। चलने से क्या होता है? इस तरह की इस कोटि की भावना है तो ब्रह्म की ही प्रदक्षिणा होगी। इसलिए मेरी सब जो कर्मेंद्रिया है वो इसी में ही लगे, और भी जो गुप्त दो कर्मेंद्रिया है उनका भी यही अभिप्राय है कि मेरे द्वारा यदि संतति हो तो वो संतति भी इसीलिए कि मैं इस ब्रह्म की ओर अभिमुख हूं। हो कैसे? तो देखिए कि ब्रह्म की ओर अभिमुख होने के लिए जो पुत्र है ना, वो भी साधन है। उपनिषद में कहा पुत्रेण जय्यो अयम लोकः, इस लोक के ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो पुत्र के द्वारा कर सकते हैं। पितृदि लोक है, उनके ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, और देवलोक के ऊपर विजय प्राप्त करनी, विजय यानी उनका लाभ लेना, वहां जाना है तो उपासना करनी चाहिए। अब पुत्र से अभिप्राय है गृहस्थ आश्रम। मेरा जो गृहस्थ आश्रम है, यानी गृहस्थ आश्रम में जो मैं कर्म कर रहा हूं, उनका एकमात्र उद्देश्य यह सांसारिक लाभ नहीं किंतु ब्रह्म लाभ हो। इसलिए हमारी ये जो संस्कृति बड़ी दिव्य है, जो भी हमारे यहां कर्म है, उपासना है, उन सब का तात्पर्य एकमात्र ब्रह्म है। इसलिए गृहस्थाश्रम कर्म प्रधान है, तो कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं जो भी करूं वो ब्रह्म के लिए करूं, यानी मेरा जो गृहस्थाश्रम है वो तदनुकूल बने। मैं जो भी गृहस्थाश्रम में कर्म करता हूं वो उनके अनुकूल हो। इसलिए सबसे पहले कहा कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, तब जाकर के वो इसी मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसलिए कर्मेंद्रिया जो है वो इस ओर अभिमुख हो, ये आवश्यक है। ठीक है, केवल कर्मेंद्रिय नहीं, और आगे कहा कि प्राण प्राण मम प्राण आप्यायन्तु, ऐसा वाक्य बनाइए, मेरा जो प्राण है वो भी आप्यायन्तु यानी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल वो हो जाए, वृद्धि को प्राप्त होवे। यानी मैं उपनिषद का अध्ययन करने जब बैठू तो मेरा जो प्राण है वो सम रहे, और प्राण से अभिप्राय है अपान व्यान उदान और समान। प्राण शब्द पांचों प्राण वृत्ति का उपलक्षण है, जैसे वो वाक शब्द है कर्मेंद्रिय का उपलक्षण, वैसे ये प्राण है वो व्यान उदान अपान और समान उन चारों का उपलक्षण हो जाएगा। यानी मेरा जो प्राण है पंचवृत्तिक प्राण, प्राण अपान व्यान उदान और समान, जिससे ये मेरा शरीर धारण होता है। देखो हमारा शरीर धारण करने में प्राण कारण है, प्राण न हो तो हमारा शरीर वो धारण ही नहीं हो पाएगा, उनकी स्थिति ही नहीं हो पाएगी। कभी सोचा हम जब भोजन करते हैं तो हाथ से उठा करके मुख में रखते हैं और फिर जमा कहां होता? पेट में। देखो मुख से लेकर यहां तक बीच में कितना फासला, दूरी है कि नहीं? तो अंदर हम हाथ से अंदर डालते हैं क्या? नहीं, हाथ से तो केवल मुख तक ही ले जा सकते, मुख में रख सकते हैं, किंतु मुख से अंदर यहां पेट तक जाता है वो कौन ले जाता? वो अपान वायु ले जाता है। अपान वायु नीचे की ओर भोजन को ले जाता है। यदि वो प्रक्रिया जो है वो कुछ गड़बड़ा जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। पांचों प्राण की जो क्रिया है वो यदि बाधित हो जाए तो समझिए कि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या वेदांत विचार होगा? क्योंकि वेदांत विचार के लिए स्थिरता चाहिए, स्वस्थता चाहिए। यदि स्वस्थता नहीं है तो हम स्थिर चित्त से विचार नहीं कर पाएंगे, चित्त व्यग्र रहेगा। और कहा जो व्यग्र चित्त अवस्था में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो सफल नहीं होता। यदि आप जप करने के लिए बैठे और चित्त व्यग्र है तो कहा व्यग्र चित्तो हतः जपः। व्यग्र चित्त अवस्था में किया गया जप है वो हत नष्ट हो जाता। नष्ट होने का अभिप्राय है उस समय हो ही नहीं पाएगा, वही उनका नाश है। मैं तो आप कहेंगे अरे नाश हो जाएगा तो करेंगे तो फिर तो बेकार ही है। अरे नाश होने का अभिप्राय है कि व्यग्र चित्त अवस्था में आप ढंग से जप कर ही नहीं पाएंगे। ढंग से जप न करना यही क्या हुआ? वो जप का नाश हुआ। इसलिए जप करने के लिए भी चित्त क्या चाहिए? स्थिर चाहिए। और चित्त स्थिर, शरीर स्वस्थ हो तभी संभव है। देखो शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, और शरीर तब स्वस्थ होगा कि प्राणापान आदि जो समग्र क्रिया है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ चले। प्राण का अपना कार्य जो है निर्बाध गति से हो, अपान का कार्य वो निर्बाध गति से हो, उदान का कार्य, व्यान और समान का जो कार्य है वो निर्बाध गति से हो। अभिप्राय है शरीर की स्वस्थता। शरीर स्वस्थ हो और फिर चक्षुरादि इंद्रिया भी स्वस्थ हो, और देखो इसलिए चक्षु से ज्ञान इंद्रिया ले लेनी है। चक्षु श्रोत्रम वो दोनों ग्रहण किया, ये भी जो है अन्य तीन जो ज्ञानेन्द्रिया उनका उपलक्षण है। अब देखिए ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु और श्रोत्र दोनों प्रधान है, इसलिए दोनों का नाम लिया। कर्मेन्द्रियों में वाक प्रधान है, इसलिए केवल वाक का नाम लिया। प्राण में जो मुख्य वृत्तिक प्राण है वो प्रधान है, इसलिए केवल प्राण का नाम लिया। किंतु ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु और श्रोत्र दोनों बराबर के प्रधान है, इसलिए दोनों का नाम ले लिया। चक्षु श्रोत्रम वो इतर जो तीन ज्ञानेन्द्रिय उनका उपलक्षण है, उसके साथ भी लगाए आप्यायन्तु, ब्रह्म ध्यान के अनुकूल वो वृद्धि को प्राप्त हो, उसी की ओर लगे। और आगे भी सर्वाणि इंद्रियाणि कह करके प्राण पंचक को भी ग्रहण कर लेना है। तो इस तरह से जो पूरा सूक्ष्म शरीर यहां पर ग्रहण हो गया वो जो है सुचारू रूप से चलेगा, तभी वेदांत का स्वाध्याय का विचार हो पाएगा। स्वाध्याय में प्रवेश हो इसलिए शरीर की, प्राण की, इंद्रियों की और सारी इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया की स्थिरता इसमें मांगी गई।
1: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் யூசர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், வி ஆர் வெரி மச் டிலைட்டட் டு தெட் யூ ஆல் நோ தட் டியூ டு த ஷவர் ஆஃப் கிரேஸ் ஃப்ரம் அல்மைட்டி லார்ட் சிவா அண்ட் தி கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் ஃப்ரம் எஸ்டீம்ட் யூசர்ஸ் லைக் யூ, அவர் சைவம் டாட் ஆர் வெப்சைட் ஹேட் பாஸ்ட் 26 சக்சஸ்ஃபுல் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப் சைவம். And it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaivalahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: பரமசுத்தயோ பிரதஸ்மரணியோ. பிரேம்புரி அத்யாத்ம மண்டல் கே அதிஷ்டாதா சுவாமி ஸ்ரீ மகாமண்டலேஸ்வர் பிரேம்புரிஜி மகாராஜ், பரமசுத்தயோ பிரதஸ்மரணியோ ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்ட மகாராஜஸ்ரீகே பாவன் சரணோ மே நமன் கர்த்தே ஹுவே, மஞ்சஸ்த விராஜமான் பரமசுத்தயோ பரமாதரணியோ சுவாமி ஸ்ரீ மகிஷானந்தி மகாராஜி கே பாவன் சரணோ மே நமன் கர்த்தே ஹுவே. கடோபநிஷத் கே ஊபர் ஸ்ருதி கா ஆதேஷ் மான்கர் ஸ்வாத்யாய ப்ரவச்சனாப்யாம் மா ப்ரமதித்தவ்யம். हम निरंतर गतिमान होते हुए प्रवचन रूपी भगवान की सेवा कर रहे हैं. मंगलाचरण का श्रवण आपने किया. अब कठोपनिषद का पहला जो मंत्र है, बड़ा ही सुंदर आख्यायिका के साथ कठोपनिषद का प्रारंभ होता है. भगवान भाष्यकार ने भाष्य किया, उस भाष्य में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ये आख्यायिका स्तुत्यर्थ है, लेकिन अति मधुर महत्वपूर्ण है, प्रेरणास्पद है. और वेदांत के सारे वो गुणधर्म नचिकेता में विराजित हैं. वेदांत की संपूर्ण भूमिका आपको देखना हो तो आपको नचिकेता में मिलेगी. ब्रह्मसूत्र में अथार्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें जो अत शब्द है वो उपकरण करण अर्थ में है. इसीलिए आपको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए. और वो इसीलिए का मतलब ही कारण का द्योतन है, माने सारी चीजें आप में विद्यमान हैं. वेदांत को समझने की योग्यता, जीवन में जीने की योग्यता है, इसीलिए आपको वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए. संपूर्ण ब्रह्म सूत्र चरितार्थ है बालक नचिकेता में. उसकी एक एक जो भाव भंगिमाएं, क्रियाएं, भावाभिव्यक्ति, सोच, दृष्टिकोण, शिष्टाचार, सभी चीजें जिस प्रकार आपके सामने दो मीमांसाएं हैं, एक कर्म मीमांसा, दूसरी धर्म मीमांसा. कर्म मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा जाता है, उसी को धर्म मीमांसा कहा जाता है. और एक उत्तर मीमांसा जो ज्ञान है. आप कर्म मीमांसा, आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उसका उपयोग करते हैं. और ज्ञान मीमांसा, उस आत्म तत्व को समझने के लिए. धर्म को कर्म को पूर्व मीमांसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूर्व की भूमिका है, वो पहले की भूमिका है। आप तैयार हो रहे हैं वेदांत को समझने के लिए, ये प्रश्न की भूमिका है और उत्तर मीमांसा उत्तर है। उत्तर उत्तर का मतलब आपके प्रश्न का उत्तर है। ये धर्म मीमांसा आपका प्रश्न है और उत्तर मीमांसा आपका उत्तर है। उत्तर आपने सुना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आपने प्रश्न पूछा और उसके बाद फिर उपदेक्षन्ति ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु आपको उपदेश करेंगे, ये उत्तर मीमांसा है। आपके सामने जैसा अर्जुन एक प्रश्न है, वैसे कठोपनिषद में प्रश्न है आपका नचिकेता, और आचार्य यम उसके उत्तर है। उसका संपूर्ण जो जीवन है जैसे अर्जुन का, वैसे ही कठोपनिषद में बालक नचिकेता का। अब इसको ध्यान देके श्रवण करेंगे क्योंकि जब हम गहराई में नहीं जाते हैं, जब तक आप शब्दों के अर्थों के गहराई में प्रवेश नहीं करते हैं, आप ऊपर ऊपर प्रवचन सुनेंगे तो आपको तो हम 15 दिन में कठोपनिषद सुना देंगे और ये जो आख्यायिका है वो एक ही दिन में सुना देंगे। हमने कई बार सुनाया है, 3 दिन में भी सुना देते हैं, 2 दिन में भी सुना देते हैं, महीना भर भी सुना देते हैं, चातुर्मास पूरा हो तो चातुर्मास में भी सुना देंगे। आपका धैर्य क्या है, आपकी समझ कितनी है, आप कैसे श्रवण करना चाहते हैं, आपकी योग्यता क्या है। आपकी योग्यता जैसी है ना वैसे ही ये सुनाया जाता है। आप सुनना क्या चाहते हैं, कैसे सुनना चाहते हैं, आप ऊपर ऊपर सुनना चाहते हैं कि गहराई से। बहुत ही सुंदर, ये इतना सुंदर है, आप एक एक श्लोक के एक एक भाव में, एक एक शब्द के भाव में। यहां सबसे पहला जो मंत्र है मैं आपके सामने रखता हूं, ओम उषन हवय वाजश्रवसः सर्व वेद सम ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। सबसे पहले भगवान भगवती श्रुति आपके सामने बालक नचिकेता के पुत्र की भूमिका का प्रतिपादन कर रही हैं। पहले मैं आपको एक कहानी के रूप में आपके सामने रखूंगा तो इन मंत्रों के अर्थ आपके मन में आलोकित हो जाएंगे। उद्दालक नाम के एक ऋषि हैं और वे बड़े समृद्ध, हजारों उनके शिष्य हैं और एकलौता एक बालक है, नचिकेता नाम है उसका। और उन्होंने एक यज्ञ का प्रारंभ किया है और वो ऐसा यज्ञ है जिसमें सर्वस्व का दान किया जाता है, कुछ बचा नहीं जाता है पीछे। और बहुत ही पठित है और ये प्रसिद्ध उनके पिता है। और उस समय अंतिम जब यज्ञ का संपादन हो जाता है तो वो सर्वस्व का दान कर रहे हैं। यहां सर्वस्व का दान अर्थ यहां सर्वस्व नहीं है, जो अपने हिस्से में जो चीजें हैं ना उसको दान करना है। माने जैसे आप पिता और पुत्र है तो बंटवारा करें दो हिस्से, और एक हिस्सा आपका एक हिस्सा पुत्र का, और जो भी आपके हिस्से में है वो सारी चीजें दान करना है। लेकिन इनके मन में पुत्र मोह है बहुत जबरदस्त, इन्होंने बंटवारे में थोड़ी बेईमानी कर दी है और ये सकाम कर्म कर रहे हैं। सकाम कर्म में बेईमानी नहीं चलती है, निष्काम में थोड़ा बेईमान हो भी जाए, क्योंकि आप निष्काम हैं, आप सकाम और बेईमानी संभव नहीं है, वहां आपके कर्म में न्यूनता आएगी। आपको कोई फुकट दे, आप दान कर रहे हैं निष्काम भाव से, थोड़ी कमी भी चल जाएगी। इसलिए आप कहते हैं ना कि दान की बछिया की दांत नहीं गिने जाते हैं, सब कहते हैं, मैंने बूढ़ी हो तो भी चलेगी। लेकिन यहां सकाम है, ये उसन शब्द मैं आपको बताऊंगा, ये सकामता का प्रतिपादन करता है। और उन्होंने क्या किया, पुत्र मोह में अच्छी अच्छी जवान दूध देने वाली जो गायें थी वो अपने नचिकेता पुत्र के हिस्से में कर दी। बूढ़ी लूली लंगड़ी अनुपयुक्त ऐसी गायें अपने हिस्से में लिया और अब वे उदार भाव से दान कर रहे हैं। बालक नचिकेता है, बड़ा अद्भुत आर्य बालक, और वो देखने में छोटा है, वो पिता के गोद में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी प्रज्ञा खुली हुई है, विवेक जगा हुआ है, और अपने ही पिता से कर्मों का उन्होंने श्रवण किया है, शास्त्र विधि उन्हें पता है, दान कैसे होना चाहिए ये भी मालूम है, और वो देख रहे हैं कि बूढ़ी लूली लंगड़ी गाय दान दे रहे हैं, और वो समझ गई कि मेरे पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन बड़े शिष्ट हैं, बहुत शिष्ट हैं, बहुत शिष्ट हैं। आप किसी की गलती को दिखाना चाहते हैं तो तरीका होना चाहिए, आप बड़े आदमी को मार्ग दिखाना चाहते हैं तो आप तरीके से दिखाइए, नहीं तो दूसरे की गलती दिखाने के चक्कर में स्वयं गलती कर लेंगे। आदमी यही तो करता है, आदमी दूसरे को गलती दिखाता है और दिखाने में ही वो स्वयं गलती कर जाता है, ये क्या बुद्धिमत्ता है। आज बालक नचिकेता अपने पिता को गलती दिखाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी अद्भुत दृष्टि है, दिखाने की दृष्टि है। आज बालक नचिकेता अपने पिता को कहते हैं, कस्मे इमाम दास्यसी, आप मुझको किसको दान कर रहे हैं। आज वो चाहते हैं मेरे पिताजी मेरे मन के भाव को समझ ले और समझकर अपने भाव को बदल दे, वो लक्षार्थ था। हाँ, ये शब्द कुछ और थे और संकेत कुछ और था, आप मुझे किसको दान देंगे। एक बार बोला, दोबारा बोला, और जैसे तीसरी बार बोला, क्रोध आया पिता को, और उन्होंने कहा, मृत्वे त्वाम ददामीति, मैं तुमको मृत्यु को दान देता हूं। बस बस कहानी खत्म हो गई। हाँ, और वो चले गए मृत्यु के पास, और मृत्यु ने माने यम ने जो ज्ञान उपदेश किया है ना, वही आपके सामने कठोपनिषद है, अब खत्म हो गए, आप जा सकते हैं। पूरा कठोपनिषद मैंने सुना दिया, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन इसका गहरा रहस्य क्या है, एक एक क्रियाएं आपको क्या बताती हैं। अब यहां सबसे पहले उद्दालकाचार्य को उषण शब्द से कहा गया है, उषण, और उषण शब्द का अर्थ होता है सकाम। वह यहां नाम से नहीं अर्थ से कहा, उषण माने होता है कामना युक्त अंतकरण से कर्म करने वाला। हमारे जीवन में चार प्रकार के कर्म होते हैं, एक सकाम कर्म, दूसरा निष्काम कर्म, ये दो कर्म हमारे जीवन में होते, नित्य नैमित्तिक काम में और निषिद्ध, ये सुना तो होगा आपने। जो पहला कर्म है आपके सामने नित्य कर्म है, और नित्य में भी सकाम और निष्काम में दोनों हैं। नित्य कर्म माने अहर अह संध्या उपासिता, आप प्रतिदिन संध्या करते हैं कि नहीं, आप प्रतिदिन ऐसे बहुत सारे कर्म करते हैं, पूजा पाठ, तो ये सारे कर्म ना नित्य कर्म है, दैनिक कर्म। आप जैसे भोजन करते हैं दैनिक कर्म, वैसे आप आध्यात्मिक भी दैनिक कर्म करते हैं, और ये दैनिक कर्म आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और नैमित्तिक कर्म जैसे दवा खाने की तरह, और नित्य कर्म भोजन करने की तरह है। आप दवा तो कभी कभी खाते हैं ना, डायबिटीज तो नहीं, यदि डायबिटीज हो तो प्रतिदिन खाना पड़ेगा भोजन की तरह, लेकिन आपको कोई स्थायी बीमारी नहीं है तो आप दवा खाते हैं, कभी कभी जुखाम खांसी हो गई, हमारे स्वामी जी कभी दवा खाते नहीं, बीमारी नहीं पड़ते। नैमित्तिक कर्म वो है जो कभी कभी, जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, श्रुति कहती है कि आप अमावस्या के दिन यज्ञ कीजिए, आप पूनम के दिन यज्ञ कीजिए, आप एकादशी का व्रत कीजिए, आप विशेष निमित्त को लेकर विशेष मास को, वर्ष को, पक्ष को, किसी देवी देवताओं को आदि लेकर आप जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म, और वो भी आवश्यक है। जैसे आप सुबह का सत्संग श्रवण करते हैं नित्य कर्म है, और शाम को गोपी गीत सुन रहे नैमित्तिक है। अब हुआ तो फिर अगली बार कर लेंगे उसको, अभी तो दो ही श्लोक हो गए, ये नैमित्तिक कर्म में। और ये दोनों कर्म आपको बहुत आवश्यक हैं, और इसमें दोनों कर्मों में दोनों भाव आप सकाम भी कर सकते हैं और आप निष्काम भी कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र विधि में एक काम्य कर्म, शास्त्र में अनेकों प्रकार के काम्य कर्म का प्रतिपादन है। हम जब प्रतिपादन करते हैं ना, तो हमारे सामने संपूर्ण वेद वांग्मय होता है। आप वेद की दृष्टि से विचार करते हैं तो आपके सामने प्रमुख रूप से चार कर्म है, और काम्य कर्म का अर्थ होता है वासनायुक्त अंतकरण से कर्म करना, जैसे स्वर्ग कामो यजेत आदि विधियां हैं। आप विशेष रूप से स्वर्ग की कामना के लिए, पुत्र की कामना के लिए, धन की कामना के लिए, बुद्धि की कामना के लिए, आप अनेकों प्रकार की कामनाएं, आप जो नित्य और नैमित्तिक कर्म करते हैं उसमें कामना नहीं है, ये निष्काम भाव से आप संध्या करते हैं, क्या आपके सामने क्या प्रयोजन है। आप प्रतिदिन जप करते हैं, अंतकरण की शुद्धि उसका प्रयोजन है। आप जो निष्काम कर्म करते हैं ना, उससे आपका अंतकरण शुद्ध होता है, ये नित्य और नैमित्तिक कर्म। और तीसरा कर्म काम्य कर्म है। काम्य कर्म में अंतकरण शुद्ध नहीं होता है, आपका अंतकरण और कामनायुक्त हो जाता है। आप अपनी कामना की पूर्णता के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, याग कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, आप कामना की निवृत्ति के लिए नहीं। तो कामना की पूर्ति होगी, कामना और बलवान होगी, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए कम से कम आप यज्ञ तो कर रहे हैं। आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान के साथ अपने आप को जोड़ते रहे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपकी कामना धर्म सम्मत है, धर्म के साथ, परमात्मा के साथ जुड़कर है, इसलिए सकाम कर्म भी बहुत श्रेष्ठ हैं, यदि परमात्मा के साथ हम जुड़कर करते हैं, और वही धीरे धीरे सकाम कर्म हमको निष्काम कर्म में ले जाएगा। इसलिए आप कभी भगवान से मांगते हो ना, तो आप घबराना मत, आप मांगते हो तो कम से कम भगवान से ही तो मांग रहे हैं, आप भगवान से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च चतुर्विधा भजन्ति माम ये जना पर्युपासते। भगवान ने कहा चार प्रकार के भक्त हैं मेरे, और भगवान को कहने में कोई संकोच नहीं है, फिर हमको स्वीकार करने में क्यों संकोच है। भगवान ने कहा चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, मेरे आर्थ भी मेरा है, दुख को निवृत्त करने के लिए मेरी प्रार्थना करता है वो आर्थ भक्त है, धन को पाना चाहता है वो अर्थार्थी है, और केवल मुझसे मुझको चाहता है वो जिज्ञासु है, और जिसकी सारी चाह खत्म हो गई है वो ज्ञानी, वो भी मेरा भक्त है। ये बात अलग है, ज्ञानी तात्मैव मे मतम, ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन है तो मेरे ही भक्त है। कामनायुक्त अंतकरण से कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म है, और चौथा जो कर्म है ना वो निषिद्ध कर्म है। शास्त्र आपको निषेध कर देता है कि भैया ये मत करो, चोरी मत करो, दूसरे के धन को हड़पो मत, दूसरे के अधिकार को छीनो मत, झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीजें आपके लिए निषिद्ध कर्म है, और इस निषिद्ध कर्म से अपने को अलग रखना है। अब इन चारों कर्मों में आपके जो उद्दालकाचार्य हैं ऋषि, वो कौन सा कर्म कर रहे हैं, तो यहां श्रुति कहती उषण हवे, वो सकाम कर्म कर रहे हैं, सकाम वे नित्य या नैमित्तिक कर्म में नहीं है, और यहां कोई ऐसा निषिद्ध कर्म भी नहीं जिस यहां से लौटना है। यहां भी सकाम कर्म करें कामना युक्त अंतकरण से। और ये कहकर की श्रुति यही दिखाना चाहती है कि जो सकाम कर्म होते हैं ना, वे बड़े सावधानी से कर्म किए जाते हैं। और सकाम कर्म की विशेषता है, आपको कर्म करने के लिए सबसे पहले आपको विधि पूर्वक वेद ज्ञान, स्वाध्याय अध्येतव्य, इस अध्ययन विधि से सिद्ध ज्ञानवान होना बहुत आवश्यक है। आप ध्यान देना, ये आपका जो मीमांसा शास्त्र है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जब पढ़ा मीमांसा न्याय दर्शन, जब पढ़ते थे ना तो बड़ी लगन थी। हर शास्त्र ऐसा लगता था कि इसको हमको समझना है। मीमांसा न्याय दर्शन में इतना सुंदर प्रतिपादन है कर्म का। आपको कर्म करना है तो अध्ययन विधि से आपका ज्ञान सिद्ध होना चाहिए, तब आप कर्म करने के अधिकारी हैं। नहीं तो क्या गड़बड़ होगा मालूम है? आपको यदि शास्त्र का ज्ञान नहीं है और सामान्य शब्द का प्रयोग कर लेंगे पंडित जी, और आपको समझ भी नहीं आएगा। आपको कभी कभी नहीं होता है? एक बार मैं राजा पंजाब में पटियाला में हम लोग चातुर्मास कर रहे थे किसी बड़े महात्मा के साथ, तो एक राजस्थान के पंडित जी थे, और वो पंडित जी बोलते थे तंडुलम समर्पयामी, तो वो माता समझ में ही नहीं आता था उसको, वो चुपचाप बैठी रहती थी। पंडित जी तंडुलम समर्पयामी, वो समझ में नहीं आया क्या करे, बोले तंडुलम समर्पयामी। वो तब उसने बोला चावलम समर्पयामी, ओहो हो बोले चावल डालो। अब आपको तंडुलम समर्पयामी में तंडुल शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, तो आप तो पंडित जी को चावलम ही तो बोलना पड़ेगा। आपको नहीं

करन्यास करते हैं वो सारे संस्कृत में। यही नहीं मालूम पड़ता है कि नाक पकड़ रहे पंडित जी की कान पकड़ रहे हैं। हाँ जब वो ऐसा करते तो कोई इधर इधर इधर कहीं घूमते घूमते फिर हाँ ऐसा ठीक है बा। ये क्या है, ये दुर्दशा है। आपको यही नहीं मालूम कि अंगन्यास में अंगुष्ठाभ्याम नमः में कहाँ क्या हाथ लगाया जा रहा है, शीर से स्वाहा में क्या हो रहा है, शीर से स्वाहा हाँ यही नहीं मालूम उसका अर्थ क्या है। अब हम अंधे की तरह देखते पंडित जी कहाँ हाथ लगा रहे, उल्टा सीधा इधर उधर। प्राणाय स्वाहा क्या मतलब क्या है भाई, प्राणाय स्वाहा का मतलब क्या है। आप तो जड़ कर्मवाद में फंस गए क्योंकि अज्ञानी है, कुछ मालूम नहीं संस्कृत का, कुछ भी कहेगा मालूम नहीं। और आपके सारे मंत्र संस्कृत भाषा में, हिंदी में तो होंगे नहीं, मंत्र कैसे हिंदी में होंगे। आप कहते कि ये बहुत कुछ कर्म करे लेकिन फल नहीं मिल रहा, कहां से मिलेगा, आपको संस्कृति नहीं आती है। इसलिए शुरू करो, हाँ ये प्रेमपुरी में संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, प्रारंभिक पढ़ लेना थोड़ा बहुत, हाँ जरूरी है। आपको इतना तो मालूम हो जाए कि भैया स्वाहा का अर्थ क्या है, सिरसी ये कौन सी विभक्ति है, इसका अर्थ क्या है। इसलिए शास्त्र ने कहा, पहला सूत्र दिया मीमांसा में, पहला आप कर्म करना चाहते हैं तो बोले अध्ययन विधि से सिद्ध ज्ञान। अध्ययन विधि का मतलब क्या है, आप ऐसे अखबार पढ़ के नहीं, विधिवत गुरु के चरणों का आश्रय लेकर, हाँ थोड़ा एक दो डंडा भी खा के ऐसा। आपका ज्ञान सिद्ध होना चाहिए। और दूसरा है आधान से, आधान की क्रिया विधि सम्मत अग्निधान कर्म, अग्नि आपके मंत्र सिद्ध अग्नि होना चाहिए। आपके घर में अग्नि है कि नहीं, तो आप यज्ञ में कौन सी अग्नि का प्रयोग करते हैं, माचिस की अग्नि लगा देते हैं आप। लेकिन ये माचिस वाली जो अग्नि है ना, या आपके कहीं से इधर उधर से लाई हुई अग्नि काम नहीं देती है। अग्नि भी कई प्रकार की होती है, अब आपको नहीं बताएंगे। अग्नियां भी कई प्रकार, आपके संपूर्ण जो कर्म है ये सारे कर्म अग्निमूलक है, अग्निमूलक है। आप कोई भी कर्म करो वहां अग्नि है, अग्नि है, अग्नि विद्या है। आपका जो धर्म है अग्नि प्रधान धर्म है। और वहां वसंते ब्राह्मणे, वसंत ऋतु में ऐसा शास्त्र विधान करता है कि आपको अग्नि आधान करना है अपने घर में। अग्नि के बिना आपका गृहस्थाश्रम था ही नहीं। पहले आप गृहस्थाश्रम में गए तो आपके घर में अग्नि होना चाहिए। कौन सी अग्नि, वो वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि आपके घर में स्थापित की जाए, इसको अग्निहोत्री बोलते हैं। और ये अग्निहोत्री केवल ब्राह्मण नहीं होते थे, ये पतन हुआ इसलिए ब्राह्मणों के साथ सरकार दिया हमने। अग्निहोत्री केवल ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय भी हाँ, और वैश्य भी। और उसके अलग अलग विधियां, अलग अलग मंत्र, अलग अलग समय थे। ब्राह्मण इस समय अपने घर में अग्नि का आधान करेगा, या अग्नि आधान कर्म हुआ करता था। और वो आदमी यज्ञ करने का, वैदिक कर्म करने का अधिकारी बन जाता था। वेद मंत्रों के द्वारा इसके घर में अग्नि स्थापित हो गई है, अब ये वैदिक कर्म करने का अधिकारी हो गया। अब हवन करेगा, संध्या वंदन करेगा, और उसी अग्निधान कर्म के द्वारा जो स्थापित अग्नि है वही अग्नि यज्ञ में काम करेगी। आप बड़े भारी यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं तो आपके घर में अग्नि होनी चाहिए, वो अग्नि वो इसलिए आप दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के जो महात्मा लोग होते हैं, जब उत्तर में यज्ञ याग करना चाहते तो यहां यजमान नहीं बनाते वो लोग। उत्तर के किसी भी आदमी पैसा तो लेंगे भैया, पैसा तो दे दो, यजमान तुमको नहीं बनाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास न चोटी है न जनेऊ और न तुम्हारे घर में अग्नि। तो वो उधर का कोई क्षत्रिय वैश्य कोई ब्राह्मण उधर से ले आते यजमान, और फिर इधर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, अग्नियाधान कर्म है। और तीसरा जो है ना, आपके पास सामर्थ्य भी होना चाहिए। आपको यज्ञ करना है तो यज्ञ करने का सामर्थ्य आप में होना चाहिए, तभी तो आप उन विधियों को पूरा कर लेंगे। आपके पास यदि धन नहीं है तो आप विधियों को पूरा कैसे करेंगे। तो प्रामुख है ना, ये तीन चीजें आपको कर्म करने के लिए चाहिए। आप यहां देखो तीनों चीजें हैं, सकाम है और उद्दालक में तीनों चीजें हैं। वहां अध्ययन सिद्धि विधि से

0: तीर्थ ज्ञान है और वे अग्निहोत्री हैं और समर्थ भी हैं। इसलिए सर्व वेद समदद उषान्न हवय वाजश्रवस, वो वाजश्रवस यज्ञ का सर्व, जिसमें सर्वस्व का दान किया जाता है, ऐसा यज्ञ कर रहे हैं सर्व वेद समदद।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

ेत् यज्ञेश अच्युत गोविन्द माधव अनन्त केशवा कृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन वेद मंत्रम। द टाइटल इज लिंगाष्टकम, प्रेजेंटेड बाय वेदमंत्रम.com टीम। ओम नमः शिवाय।